मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज गुड बुध

आज बुधवार है। सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि। तदनुसार 27 मई वर्ष 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो रहे हैं। आरंभ होती है प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। खेत खलिहान में सुनिए वार्ता, विषय है करेले की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।

0: पूसा बीसे और पूसा दो मौसमी प्रमुख हैं। कोयम्बटूर लौंग किस्म कृषि अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई है। अर्क हरित यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा विकसित की गई है। अन्य किस्मों में लंबी सफ़ेद, छोटी हरवी, सी 96, बटन, जौनपुरी और फैजाबादी प्रमुख हैं, जहाँ पर नेनुआ, कद्दू और अन्य फसलों की खेती होती है। वहाँ पर करेला की खेती अच्छी प्रकार से की जा सकती है। वर्षा ऋतु के लिए बोने का समय इसका जो है वो जून जुलाई है। 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। एक जगह पर 2 बीज 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बोने की दूरी लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हैं। अधिक फैलने वाली किस्मों को लाइन से लाइन 2.5 मीटर और पौधा से पौधा 1 मीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। सामान्य रूप से 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद को खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोते समय तथा नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा बोने के 1 से 1.5 महीने बाद जड़ के पास टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। गर्मी की फसल को हर 5वें दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन आपकी ये फसल बरसात की फसल होगी इसलिए इसमें सिंचाई कम करने की आवश्यकता होगी। यदि सूखा पड़ जाए तभी सिंचाई करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वर्षा के द्वारा ही सिंचाई होती रहेगी। जाड़े के मौसम में यदि ये फसल चली जाए तो उस समय जो है हर 8वें दिन सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। फलों की तुड़ाई में भी आप ध्यान रखें कि मुलायम एवं छोटी अवस्था में ही फल जो हैं उन्हें तोड़ लेना चाहिए। तुड़ाई बोने के 75 से 90 दिन बाद शुरू हो जाती है। यह कार्य हर 3रे दिन करनी चाहिए। इसकी उपज जो है 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बीमारियां इसमें कद्दू वर्गीय फसलों की तरह ही लगती है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पत्तियों के ऊपर कवकों की उपस्थिति देखी जाती है, धब्बे भी पड़ते हैं, पत्तियां जो हैं वो सूखती हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप सल्फर चूर्ण का बुरकाव करें, कैराथिन दवा का भी प्रयोग कर सकती हैं। लाल कीड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान करेला की फसल को करता है। आप देखेंगे कि जब करेला में फल तैयार होते हैं उस समय अनेक बड़े बड़े कीड़े पौधे के ऊपर बैठ जाते हैं और उससे करेला की फसल जो है वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। उस समय आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा। ज्यों ही आप खेत में अपने करेला के पौधे के ऊपर 1 या 2 कीड़े की उपस्थिति देखें, तुरंत आप सचेत हो जाएं और उस समय जो है इंडोसल्फान 35 cc दवा या अन्य सुरक्षित कीटनाशी दवाएं जैसे मैलाथियन दवा है इसका आप छिड़काव करें, 1 या 2 छिड़काव करें। इससे जो है कीड़े जो कि पौधे के ऊपर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। और
1: खेत खलिहान में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था करेले की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

0: भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.
3: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम चिंतन मनन।
4: वीर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि उन व्यक्तित्वों की अंतः साधना का दस्तावेज है जिन्होंने अपने विचारों और कष्टों से राष्ट्र की चेतना को दिशा दी। ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व थे वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जीवन राष्ट्रबोध, बौद्धिक साहस और आत्मत्याग का अप्रतिम उदाहरण है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र

0: के भगूरा ग्राम में जन्मे सावरकर का व्यक्तित्व बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभा और तेजस्वी चेतना से परिपूर्ण था। उनके भीतर देशभक्ति किसी एक क्षण की भावुकता नहीं, बल्कि वह निरंतर विकसित होती वैचारिक साधना थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम से प्रेरणा लेकर विदेशी दासता के विरुद्ध चेतना का दीप प्रज्वलित कर दिया। अपने लंदन प्रवास के दौरान सावरकर केवल एक विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि वे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के बौद्धिक सूत्रधार के रूप में उभरे। उनकी ऐतिहासिक कृति 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश सत्ता द्वारा प्रचारित इतिहास दृष्टि को चुनौती दी और प्रतिपादित किया कि 1857 केवल विद्रोह नहीं, बल्कि संगठित राष्ट्रीय संघर्ष था। यह ग्रंथ विचारों की वह ज्वाला थी जिसने युवा मनों में स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित की। ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई काला पानी की अमानवीय सजा सावरकर के जीवन का सबसे कठोर अध्याय है। अंडमान की सेल्युलर जेल में बिताए गए वे वर्ष केवल शारीरिक यातना के नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और वैचारिक तपस्या के भी थे। कारागार की अंधेरी कोठरियों में उन्होंने अपने आत्मबल को टूटने नहीं दिया। पीड़ा के बीच भी उन्होंने साहित्य रचा, कविताएं गढ़ी और राष्ट्र के भविष्य पर चिंतन किया, जो यह सिद्ध करता है कि महान विचारों को कारागारों में कैद नहीं किया जा सकता। सावरकर एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक समाज सुधारक और प्रखर साहित्यकार भी थे। उन्होंने छुआछूत, सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। उनके लिए राष्ट्र की शक्ति सामाजिक एकता और सांस्कृतिक आत्मबोध में निहित थी। वे ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो आत्मसम्मानी, संगठित और बौद्धिक रूप से निर्भीक हो। हिंदुत्व की उनकी अवधारणा को केवल धार्मिक परिभाषाओं में बांध देना उनके विचारों के साथ अन्याय होगा। सावरकर के लिए हिंदुत्व एक सांस्कृतिक चेतना थी जो इतिहास, परंपरा और राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हुई थी। उनका लक्ष्य किसी वर्ग का वर्चस्व नहीं, बल्कि राष्ट्र की संगठित शक्ति का निर्माण करना था। वीर सावरकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि बौद्धिक निर्भयता और आत्मसम्मान की अवस्था है। वे विचारों से भी क्रांतिकारी थे और कर्म से भी। उन्होंने जो सहा वह केवल शरीर ने नहीं, पूरे राष्ट्र ने सहा, और जो जिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। 28 फरवरी 1966 को वीर सावरकर ने देह त्याग किया, किंतु उनका वैचारिक उत्तराधिकार आज भी जीवित है। वे आज भी प्रश्न करते हैं, प्रेरित करते हैं और राष्ट्र के प्रति सजग रहने का आग्रह करते हैं। वीर सावरकर को केवल इतिहास के विवादों में सीमित कर देना उचित नहीं होगा। वे भारतीय चेतना के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जो त्याग, साहस और वैचारिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वीर सावरकर एक व्यक्तित्व नहीं, एक विचार है। एक विचार नहीं, एक सतत राष्ट्र साधना है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन मनन, स्वर सौरभ कुमार का था। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हो रहे हैं। सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में देश वंदना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश वंदना। अब सुनिए गायक कलाकार राजेंद्र काचरू के स्वर में भजन।

खिंच रहा है गुड़िया। माँ के भक्तों से दूर होगी मजबूरियाँ, आओ माँ के भक्तों से दूर होगी मजबूरियाँ। बंजारा कहता है

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब सुनिए मालिनी अवस्थी की आवाज में ये भजन।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला भजन सुनिए सेवंती सान्याल के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता, विषय है स्वास्थ्य संबंधी रोगों से बचाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर SN भौमिक।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं श्वास संबंधी रोगों के बारे में, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र में, सांस नली में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और हमें कैसे इनसे बचना चाहिए। और इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर SN भौमिक को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्वसन तंत्र में, सांस नली में ऐसी कौन कौन सी आम बीमारियां हो सकती है जिनसे कि हमें बचना चाहिए।
1: सबसे पहले तो साइनसाइटिस, दूसरी आस्मा, दूसरा TB, तीनों श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है।
0: साइनस की अगर हम बात कर लें, साइनसाइटिस की बात करें, तो साइनसाइटिस क्यों हो जाता है और इसमें कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं?
1: साइनसाइटिस में कफ जम जाता, जैसे मैक्सिलरी साइनसाइटिस हो जाता है, फेस में जाके दोनों तरफ मैक्सिलरी, फ्रंटल साइनसाइटिस हो जाता है। साइनसाइटिस में कफ हो जाता है, कफ हो जाने के कारण उसको बराबर सर्दी रहता है, नाक जाम हो जाता है, सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगता है, सर्दी के कारण कफ हो जाता है, हेडेक होने लगता है, सर दर्द करने लगता है, सर दर्द से बेचैन रहता है, फिर उसमें सांस लेने से उसका अस्थमा टाइप का आने लगता है, उसको दम फूलने लगता है, सांस नहीं ले पाता, नाक जाम हो जाता है, फिर उसको पोल्यूशन से जो धुआं धुआं होता है, इसे TB भी होने का ही रहता है, लंग्स में TB हो जाता है।
0: तो आपने बताया कि TB भी हो सकता है, तो जब किसी व्यक्ति को TB हो गया है तो प्राथमिक लक्षण कौन कौन से नजर आते हैं?
1: TB होने से TB में उसको आपको खून मुँह से ब्लड आने लगता है, देखा जाता, शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है, लीन एंड थीन हो जाता है TB में, फिर उसको खांसी होने लगता है, TB में भूख का कमी हो जाता है, और उसके बाद उसको शरीर में कोई ताकत नहीं मिलता, TB के कारण उसका आपको खून का कमी आ जाता है, जिसके कारण लंग्स TB में खून का एनीमिया होने का बहुत ही रहता है, एनीमिया हो जाता है TB के चलते, लंग्स इन्फेक्शन के चलते।
0: जी, तो ये तमाम बीमारियां जो आपने बताई तो काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं, तो इनसे हमें बचना कैसे चाहिए, ये हमें नहीं हो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए?
1: इसे बचने के लिए हमें देखना पड़ेगा, जो खून का कमी आ जाता है इसमें TB के कारण, उसके लिए हमको थोड़ा सा खाने में फल उल लेना चाहिए ताकि ब्लड आवे बॉडी में, थोड़ा सा बीट उट गाजर उजर लेना चाहिए खाने में, फिर आपको आयरन का भी जो दवा है वो भी लेना चाहिए, और आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए, साफ सुथरा शरीर रहना चाहिए, खाने में भी यही सब होना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, हम आए दिन ये भी देखते हैं कि धूम्रपान जो युवाओं में एक फैशन बन गया है, ये तो बहुत खतरनाक है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये किस प्रकार हमारे श्वास नली को, हमारे फेफड़े को खराब करता है और इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: धूम्रपान से हम लोग को कैंसर होने का बहुत ही डर रहता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए धूम्रपान तो होना ही नहीं चाहिए, कैंसर होने से आदमी को बचना मुश्किल है, इसमें तो कोई इलाज भी नहीं है, सटीक इलाज नहीं है, जो भी इलाज है फॉर बीइंग टेम्पोररी है, लेकिन अक्सर रोगी चला ही जाता है, तो इसीलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, एक और आम समस्या है जो जाने अनजाने में हम लोगों को ये सामना करना पड़ता है, पॉल्यूशन की समस्या, खासकर अभी हम वायु प्रदूषण की बात करेंगे, इससे हमारे श्वसन तंत्र को क्या क्षति पहुँचती है?
1: पॉल्यूशन से यो गाड़ी उड़ी रास्ता पर चलता है, इसका धुआं होता, इसका धुआं बहुत पॉल्यूशन से खराब करता, आदमी का सांस के द्वारा शरीर में जाता, शरीर में जाने से वो डायरेक्ट लंग्स में जाता, लंग्स।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज के कार्यक्रम में आपने सुना डॉक्टर SN भौमिक से श्वास संबंधी रोगों से बचाव विषय पर चर्चा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की अगली कड़ी। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पार गावकर।

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

सात बजे आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता में वार्ताकार मृगेंद्र प्रसाद सिंह से समेकित कृषि के लाभ विषय पर वार्ता और 7:52 पर प्रस्तुत होगा सुगम संगीत कार्यक्रम सुरलहरी। 8 बजे पेश होगा फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 10 बजे प्रस्तुत होगा कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम फिल्मी गजलें और 10:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पुनः रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। वक्त हो चला है समाचार का, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: योजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचो सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17तमस्य विदेशमंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:07 बज रहे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

श्रोताओं, स्वागत है आपका आज के मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम रसरंग से। कलाकार हैं सीमा बनर्जी। कार्यक्रम के प्रारंभ में इनसे सुनिए मीराबाई द्वारा लिखा भजन।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर
2: 8700001-4242।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोता प्रस्तुत है मौसम सूचना। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 27 से 31 मई के दौरान जिले में एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% रहने का अनुमान है। आज हवा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं आइए जानते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना। रेल संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस सुबह 7:50 पर चलेगी। रेल संख्या 13016 हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही, इसका सही समय है सुबह 7:45। रेल संख्या 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चलेगी, इसका सही समय है सुबह 8:15। रेल संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने सही समय से चल रही है, इसका सही समय है सुबह 8:05। रेल संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, इसका सही समय है सुबह 8:37। रेल संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमो अपने निर्धारित समय से चलेगी, इसका सही समय है सुबह 9:15। रेल संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी, इसका सही समय है सुबह 9:35। रेल संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, इसका सही समय है सुबह 10:15। रेल संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है, सही समय है सुबह 11:55। आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं आप सुनिए दुष्यंत का लिखा गीत कलाकार सीमा बनर्जी की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम रसरंग में कलाकार सीमा बनर्जी की आवाज को। अब सुनिए कवि राजकुमार प्रसाद से काव्यांजलि में कविता।
2: कि धूप इतनी बही हवा रोई, धूप इतनी बही हवा

अस्क बादल हुए तितलियों के, अस्क बादल हुए।

पंख कुतरे गए परिंदों के पंख।

ओई, और अंत में राज संत्रास में सहर संदल, राज संत्रास में शहर

एक खादी पर हम थोड़ा बापू को भी याद करें, और हिंदी रचना है, ये मेरी दूसरी रचना है। खादी को अपनाना सीखें, खादी को अपनाना सीखें, इसके गुण को गाना सीखें, इसके पवित्र चिंतन फल को घर घर तक पहुंचाना सीखें।

पवित्र चिंतन फल को, इसके पवित्र चिंतन फल को घर घर तक पहुँचाना, सीखें खादी को अपनाना, सीखें खादी को अपनाना, सीखें इसके गुण के गाना, सीखें घर घर तक पहुँचाना, सीखें खादी को अपनाना, सीखें इसमें जीवन के गीत मधुर, इसमें जीवन के गीत मधुर हथ

0: ना सीखें, इसके पवित्र चिंतन फल को घर घर तक पहुंचाना सीखें, खादी को अपनाना सीखें। इसमें जन गण मन की भाषा, इसमें जन गण मन की भाषा, सुंदर स्वदेश की परिभाषा। इसमें जन गण मन की भाषा, सुंदर स्वदेश की परिभाषा, पथ को प्रशस्त करने वाली, पथ को प्रशस्त करने वाली, उज्ज्वल भविष्य की प्रत्याशा, उज्ज्वल भविष्य की प्रत्याशा। खादी को अपनाना सीखें, इसकी भाषा परिभाषा से चितवन को नहलाना सीखें, इसकी भाषा परिभाषा से चितवन को नहलाना सीखें। खादी को अपनाना सीखें, इसके गुण को गाना सीखें, इसके पवित्र चिंतन फल को, इसके पवित्र चिंतन फल को घर घर तक पहुंचाना सीखें। खादी को अपनाना सीखें।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यांजलि में कवि राजकुमार प्रसाद से कविता। अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, पहला नगमा सुनिए फिल्म ड्रीम गर्ल से। स्वर है पलक मुशल और साथियों का, बोल लिखे हैं सबीर अहमद ने।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, प्रस्तुत है समाचार पत्रों की सुर्खियां। विधान परिषद की 10 खाली सीटों पर जून में चुनाव होंगे। इसमें 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि 1 सीट पर उपचुनाव होगा। अगली खबर है, बिहार पुलिस वायरलेस की सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा अब 28 जून को होगी। जून के अंतिम हफ्ते तक 4 लाख शिक्षकों का तबादला होगा। नई नीति तैयार हो रही है। गंभीर बीमारी और महिलाओं को पहला मौका दिया जाएगा। नए सत्र से नए स्कूलों में पढ़ाएंगे शिक्षक। फिजूल खर्ची को रोकने और ईंधन बिजली की बचत के लिए बिहार सरकार ने 6 फरमान जारी किए। यूरोपीय मौसम एजेंसी का 15 दिन का पूर्वानुमान जारी। 29 मई से 5 जून तक 90% भारत में प्री मानसून बारिश। अब खेल सुर्खियां। बेंगलुरु ने गुजरात को 92 रन से हराया। 6ठी बार कोई डिफेंडिंग चैंपियन फाइनल में। फ्रेंच ओपन में सबालेंका ने 75 मिनट में जीता पहले राउंड का मुकाबला। 16 महीने में रिकॉर्ड 30 जीत। चोट की वजह से मिचेल मार्च सीरीज से बाहर। पाकिस्तान के खिलाफ 4थे कप्तानी विकल्प के साथ उतरेगा ऑस्ट्रेलिया। आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, सुनिए मिशन मंगल से ये नगमा। आवाज़ें हैं शिल्पा राव और साथी की, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और इसे संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
4: Nexa.
5: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, आइए जानते हैं आज के इतिहास से जुड़ी प्रमुख घटनाओं के बारे में। 27 मई 1703 को यानी आज के दिन सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना रूस के इतिहास में शहर का खास महत्व है और इसे 1917 की महान रूसी क्रांति के गवाह के तौर पर विशेष पहचान मिली। 27 मई 1813 को अमेरिका ने फोर्ट जॉर्ज कनाडा पर कब्जा किया और आज के दिन 1895 में ब्रिटिश आविष्कारक बर्ट एक्ट्रस ने फिल्म कैमरा यानी कि प्रोजेक्टर का पेटेंट करवाया था। 27 मई 1908 को मौलाना हकीम नसरुद्दीन अहमदिया मुस्लिम समुदाय के पहले खलीफा बने थे। 1921 में आज ही के दिन यानी 27 मई को ब्रिटेन के नियंत्रण के 84 बरस बाद अफगानिस्तान को संप्रभुता मिली थी। 27 मई 1927 को चीन के गृह युद्ध में जापानी सेना का दखल हुआ था और आज ही के दिन वर्ष 1941 में जर्मन जंगी जहाज मिसमार्क को ब्रिटिश नौसेना ने डुबोया था। 27 मई 1948 को महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ था और आज ही के दिन 1951 में मुंबई में तारापुर वाला मछलीघर का उद्घाटन हुआ और आज यह मछलियों के एक बड़े संग्रह के तौर पर विख्यात है। यहाँ देश दुनिया की बहुत सी प्रजातियों की मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव रखे गए हैं।

27 मई 1957 को कॉपीराइट विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इसे 21 जनवरी 1958 को पूरे देश में लागू किया गया था। वर्ष 1964 में 27 मई को आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था और 1977 में आज ही के दिन पैन एम और केएलएम के दो विमान टकराए थे जिसमें 582 लोगों की मौत हो गई थी। 2006 में 27 मई को हॉलीवुड की चार फिल्मों में सुपरमैन की भूमिका निभाने वाले क्रिस्टोफर रीव घोड़े से गिरे थे और 1957 में केवल महिलाओं का पहला दल उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था जिसमें 20 ब्रिटिश महिलाएं शामिल थीं। आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनवर से, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ ने। संगीत है सईद कादरी का और गीतकार हैं मिथुन।

इस गीत के साथ ही मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम सिल्ला यहीं संपन्न होता है। हम आशा करते हैं कार्यक्रम का ये अंक आपको पसंद आया होगा।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: Akashwadi at 90.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग,
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
1: 8700014242।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और उर्दू समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवले

0: लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने

0: स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के TV चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर

0: मैच में गुजरात टाइटंस को 52 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society.

0: हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर ज़रूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नज़र-ए-सानी SIR के कानूनी जवाब को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मस्कूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से SIR के अमल के कानूनी जवाब को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नज़र-ए-सानी का ये अमल आईन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावुज करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में SIR अमल से मुतासिर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फरोग देने की खातिर उबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ये वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नज़र-ए-सानी के मकासद के लिए सैंपल डेटा के साथ URL cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: CBSE ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो URL सर्कुलेट किया जा रहा है वो इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्टल से मुख्तलिफ है। बोर्ड ने कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए मजबूत निज़ाम के साथ असेसमेंट में शफाफियत बढ़ाने के खातिर ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम नाफिस किया गया है। CBSE ने अपने हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में किसी तरह की सिक्योरिटी खिलाफवर्जी के दावों को खारिज करते हुए सभी मुतालिका अफराद को फिर यकीन दिलाया है कि जांच के प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सभी तहफ़ुज़ात नाफिस किए गए हैं। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला अहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्किडेरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर अहलकारों ने ऑर्किडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोलकाता की एक खसूसी अदालत ने मालदा के मोथाबारी इलाके में

0: जुडिशल अफसरान पर हमले के मामले में मजीद 15 अफराद को 5 जून तक कौमी जांच एजेंसी की तहवील में भेज दिया है। पीर की रात को मोथावारी और आसपास के इलाकों में मरकजी एजेंसी की छापे मारने की कार्रवाई के दौरान इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान एनआईए ने इस मामले के सिलसिले में 2 केस डायरियां पेश की। एनआईए के जराए के मुताबिक इस वाकये के दिन की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हममनसब पेनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में 1-2 दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: केरलम के जनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेजी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ निफाज की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेजोन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मंसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमेरिकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली DEMU ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फरोग देने की समत एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निजाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज्यादातर पुरअमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, قادیان اور شام چوراسی کے میونسپل کاؤنسل حلقوں میں 13 جون کو انتخابات کرائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کل رات دھرمشالہ میں کھیلے گئے کوالیفائر ون مقابلے میں رویل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو 92 رن سے ہرا کر آئی پی ایل 2026 کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ رویل چیلنجرز بنگلورو کی جانب سے دیے گئے 255 رن کے بڑے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم تین گیند رہتے 162 رن ہی بنا سکی اور آل آؤٹ ہو گئی۔ آج نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم راجستھان رویلز کے مد مقابل ہوگی۔ یہ میچ شام 7:30 سے کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اصغر علی۔
2: شکریہ نیتکا۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے نئی دلی میں ہونے والی کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے کہ کواڈ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اہم سمجھوتے۔ روزنامہ پرتاپ نے اسے اپنی پہلی خبر بناتے ہوئے لکھا ہے کہ ہند بحر الکاہل خطے میں بحری سلامتی میں کواڈ رول نبھائے گا۔ حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفات کی ادائیگی کے موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں حجاج کرام کے میدان عرفات میں جمع ہونے کی خبر کو بھی بیشتر اردو اخبارات نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ نریندر مودی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر ان کو مبارکباد دیے جانے اور نیک خواہشات کے اظہار کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے ان 12 سالوں کو قومی خدمت، اچھی حکمرانی، خود انحصاری، غریبوں کی فلاح و بہبود اور ہندوستان کی عالمی ساکھ کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا دور قرار دیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے بین الاقوامی سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانے کے بیان کو دوسری سب سے اہم خبر بنائی ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی سرکار نے دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلی کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائی ہے۔ سپریم کورٹ آج ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی جن میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سی بی ایس سی نے اپنے آن اسکرین مارکنگ نظام کی خلاف ورزی کے بارے میں سوشل میڈیا پر کیے جانے والے دعووں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ یہ صرف ٹیسٹنگ سائٹ ہے، کوئی حقیقی پلیٹ فارم نہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے آج مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں انتہائی شدید گرمی کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رویل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने का दिया निर्देश। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब नगर निकायों में भी आयोजित होंगे सहयोग शिविर। केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। और पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया है। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि राज्य के सुदूर इलाकों से 5 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। उन्होंने राज्य के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत केंद्रों, औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष कृषि उत्पाद क्षेत्र और महत्वपूर्ण बाजारों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल का काम जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों का विकास किया जाएगा। इसके तहत नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, साथ ही चिन्हित मेडिकल कॉलेज विकसित भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराने और मरीजों के अनावश्यक रेफर किए जाने पर यथासंभव रोक लगाने के निर्देश दिए। राज्य के महाविद्यालयों का देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों से करार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि इस पहल से दूसरे राज्यों से भी छात्र बिहार आकर शिक्षा हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे। उन्होंने 1 जुलाई से उन 211 प्रखंडों में स्नातक की पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री ने नए महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति के लिए कमिटी का शीघ्र गठन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब राज्य के नगर निकायों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर शिविर की तैयारी का निर्देश दिया है। पंचायतों की तरह नगर निकाय क्षेत्रों में भी प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगेंगे। केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 961.71 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह परियोजना बिहार में रेल अवसंरचना को नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने इस रेल लाइन को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है। पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार होगा। नई दिल्ली

में परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी अस्थायी संसदीय समिति और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू के साथ बैठक में इस पर सहमति बनी। समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। श्री झा ने बताया कि राजगीर में हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सोनपुर रेल मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक हाजीपुर में संपन्न हुई। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, वैशाली सांसद मीना देवी, कटिहार के सांसद तारिक अनवर और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा शामिल हुए। बैठक में रेलवे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी अगले 6 महीने तक सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अब राज्य और जिला स्तरीय बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी, साथ ही जिला स्तरीय समीक्षात्मक और समन्वय बैठकों का आयोजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों के लिए कार पुलिंग व्यवस्था को लागू किया जाए। यह व्यवस्था राज्य स्तर के साथ साथ जिलों में भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इबोला वायरस के बढ़ रहे प्रसार को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी SOP में विदेश यात्रा से आने वाले लोगों की निगरानी बढ़ाने, एयरपोर्ट के पास क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों का तुरंत इलाज शुरू करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार की पहल ज्ञान भारतम मिशन के तहत चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे में बिहार देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश भर में अब तक हुए 5,500 सर्वे में से बिहार में 1,000 सर्वे कार्य पूरा हुआ है। वहीं राज्य में अब तक 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान की गई है। पांडुलिपियों की पहचान में बिहार देश में 5वें स्थान पर है। राज्य के कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम 15 जून तक चलेगा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1983 में मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। यह घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी थी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हुए थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में जनजातीय करिमा उत्सव के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन भी मौजूद रहेंगे।

पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है।

0: पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर राज्य के दक्षिणी हिस्सों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। डेहरी का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया एयरपोर्ट पर कल सेना के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी का संकेत मिलने के बाद पायलटों ने आपात लैंडिंग करवाई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 सैन्यकर्मी सुरक्षित हैं। सेना का हेलीकॉप्टर रांची से बिहटा एयरबेस आ रहा था। मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर रांची के लिए रवाना हो गया। पटना के IGIMS में आयुष्मान घोटाले की जांच के लिए पुलिस और संस्थान की ओर से दो अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। IGIMS ने 6 सदस्य कमेटी का गठन किया है जो घोटाले के हर बिंदु पर जांच करेगी। इधर पुलिस ने इस मामले के आरोपी 4 संविदा कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए SIT गठित की है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत पटाने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल पर भारी वाहनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथ के औरंगाबाद प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद ने बताया कि भारी वाहनों के परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है।
2: इसका वैकल्पिक मार्ग है जो झारखंड से गाड़ी आएगी वो तेतरिया होते हुए नबीनगर से होते हुए बारून चल जाएगी और दूसरा रूट है जो हल्की गाड़ी और आएगी तो अंबा होते हुए नबीनगर से बारून चली जाएगी। अभी चूंकि सब प्राकरण तैयार किया जा रहा है, प्राकरण प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है, प्राकरण होते ही इसे टेंडर हो जाएगा, उसका 2 महीना का दिया गया, 2 महीना में कम्प्लीट होना चाहिए।
1: पटना के ज्ञान भवन में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले के दूसरे दिन कल 3,659 युवाओं का चयन हुआ। इधर अररिया में आयोजित रोजगार मेले में 42 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों ने नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना के मुसल्लापुर थाना क्षेत्र के सैदपुर नहर रोड स्थित नंदनगर कॉलोनी के पास से पुलिस ने 3 छात्रों को मादक पदार्थ स्मैक और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक CRPF जवान से 5 लाख रुपए लूट लिए। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य के नगर निकायों में भी लगेंगे सहयोग शिविर। दैनिक जागरण लिखता है, विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों के लिए 18 जून को मतदान। प्रभात खबर की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर गठित की उच्च स्तरीय समिति। दैनिक भास्कर ने लिखा है, फिजूल खर्ची रोकने और ईंधन बिजली की बचत के लिए बिहार सरकार ने 6 फरमान जारी किए। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, दिल्ली से बिहार आ रही बस पलटी, बिहार के दारोगा और कैदी समेत 6 की मौत। आज अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, PPP मॉडल पर विकसित होंगे मेडिकल कॉलेज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का दिया निर्देश। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब नगर निकायों में भी आयोजित होंगे सहयोग शिविर।

0: केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी और पूर्णिया मधेपुरा मधुबनी बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया गीत।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं, पहला नगमा सुनिए फिल्म आजा नचले से। आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की। इसे संगीतबद्ध किया है सलीम सुलिन मान ने और गीत की रचना की है जयदीप सहनी ने।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म सुल्तान से, जिसे गाया है पापोन ने, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इसकी धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: असल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं आप सुनिए महालक्ष्मी अय्यर और राहत फतेह अली खान के सुर में ये नगमा। फिल्म है झूम बराबर झूम, गीतकार हैं गुलजार और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं विजय कुमार दास। प्रारंभ में इनसे सुनिए कबीर दास का लिखा भजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं विजय कुमार दास। अब इनसे सुनिए गुरु नानक देव का लिखा भजन।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं विजय कुमार दास। अब इनसे सुनिए हरिवंश राय बच्चन का लिखा गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार विजय कुमार दास की आवाज को। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है आप तो ऐसे ना थे। गीतकार हैं निदा फाजली और संगीत है उषा खन्ना का।

AIR at 90. आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म लावारिस से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। बोल लिखे हैं अनजान ने और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं आप सुनिए मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाज़ में ये नगमा, फिल्म है मुद्दत। इस गीत की रचना की है इंदिवार ने और इसके धुन बनाई है पप्पी लहरी ने।

अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर, गीतकार हैं अनजान और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए फिल्म कन्यादान से, स्वर है मोहम्मद रफी का, इसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और गीतकार हैं नीरज।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। अब सुनिए लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं रेणु भारतीय, इनसे सुनिए देवी गीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं रेणु भारतीय। अब इनसे सुनिए झूमर।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत कार्यक्रम में कलाकार रेणु भारतीय की आवाज़ को। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:45 होने ही वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को सोचना, समझना और जीना सिखाया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अपने प्रदेश बिहार की।

बिहार, यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना और ध्यान लगाना। यह बौद्ध भिक्षुओं की वह तपोभूमि रही है जहां विचारों को पंख मिले और इंसान की बुद्धि ने बुद्धत्व का मार्ग खोजा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की उसी महान बौद्धिक विरासत की, जिसने सदियों तक दुनिया का मार्गदर्शन किया और आज भी हमारी चेतना का हिस्सा बनी हुई है।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है यहां का आध्यात्मिक दर्शन। ये वो भूमि है जहां विचारों की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया रूढ़ियों में उलझी जकड़ी हुई थी, तब इसी बिहार की धरती पर दो महापुरुषों का अवतरण हुआ है जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो ज्ञान की खोज में कपिलवस्तु से निकले और उन्हें परम ज्ञान यानी बोधत्व की प्राप्ति कहां हुई? आप जानते हैं, बिहार के ही गया जी में, यानी बोध गया में।

निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। यह मानो बुद्धि और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। यह बौद्धिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश था।

ठीक इसी दौर में इसी भूमि पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश भी गूंजा। वैशाली की पावन धरती पर जन्मे महावीर ने स्यादवाद और अनिकांतवाद का दर्शन दिया। अनिकांतवाद का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक सहिष्णुता से है। यह दर्शन सिखाता है

और केवल यही नहीं, जनकपुर और मिथिला का क्षेत्र याद कीजिए, राजा जनक की सभा जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे मनीषी उठते थे। गार्गी जो नारी चेतना और अगाध विद्वता का प्रतीक बनी, जिन्होंने भरे दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। यह प्रमाण है कि बिहार की बौद्धिक समृद्धि में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास।

0: श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात ना कर लें। एक दौर था जब दुनिया के कोने कोने से, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से लोग यहां पढ़ने आते थे, और भारत में ज्ञान का वह महाकेंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। पांचवीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक इमारत भर नहीं था, वह ज्ञान का एक जीवंत समंदर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था और जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक जैसे खंड थे। कहते हैं कि जब इस पुस्तकालय में आग लगी तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए कितना आगाध ज्ञान संचित रहा होगा वहां। नालंदा की विशेषता क्या थी? वहां की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि द्वारपाल, यानी जिसे आज हम गेटकीपर कहते हैं, वे ही छात्रों की परीक्षा ले लेता था और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी डायरी में नालंदा के इस बौद्धिक स्तर की जो तारीफ की है उसे पढ़कर आज भी हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और केवल नालंदा ही क्यों, भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, वज्रयान, बौद्ध धर्म और दर्शन का यह बहुत बड़ा केंद्र था। इसके अलावा उदंतपुरी और जगदल जैसे शिक्षा केंद्र भी इसी बिहार की मिट्टी पर फले फूले। ये विश्वविद्यालय इन बातों के सबूत हैं कि बिहार केवल खेती किसानी का प्रदेश नहीं रहा है, यह दुनिया का बौद्धिक पावर हाउस था।
1: कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन

और आइए अब बात करते हैं विज्ञान और गणित की। जब हम शून्य यानी जीरो की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, और भारत में इसी शून्य को देने वाले गणित और खगोल विज्ञान के महानायक आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी रही है। पटना के पास तारेगना में उनकी वेधशाला थी, जहां बैठकर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बिहार की वैज्ञानिक सोच की पराकाष्ठा थी। और अब चलते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य यानी कौटिल्य जैसा मस्तिष्क पैदा किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना देना, एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना, ये चाणक्य की बौद्धिक कूटनीति का ही परिणाम था।

और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य के। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला। कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी। राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाओं यूपीएससी से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत को सिर्फ याद न करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र

साथ चले कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था मोहम्मद शाहिद सबा ने। अब मुझे यानी संजय किशोर को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मेरियम वीप 205.7 छः मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दे दे प्यार दे टूक से। आवाज़ है ज्योतिका टंगरी और साथियों की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं, आपको हम सुनवा रहे हैं धुरंधर फिल्म का यह गीत, जिसे शुरू से संवारा है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र, पेश है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। नमस्कार साथियों, गुलदस्ता कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त रिया। दोस्तों, आज 27 मई है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक गहरी उदासी और असीम श्रद्धा के साथ दर्ज है, जब पूरा देश गहरे शोक में डूब गया था। आज हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार और हम सब के प्यारे चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि आज़ाद भारत को लोकतंत्र और प्रगति का रास्ता दिखाया। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर उनकी यादों को नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो साथियों, सुनते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ में यह ऐतिहासिक गीत।

दोस्तों, नेहरू जी को बच्चों से बेपना मोहब्बत थी। वो कहते थे कि आज के बच्चे ही कल का भारत बनाएंगे। यही वजह है कि बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि अगर देश को आगे ले जाना है तो युवाओं को शिक्षित और वैज्ञानिक सोच से भरपूर होना होगा। आज हम उनके इसी विज़न को याद कर रहे हैं। आइए इसी बाल प्रेम को समर्पित बच्चों का यह सदाबहार तराना सुनते हैं।

दोस्तों, पंडित नेहरू सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। आज हम जिस विकसित भारत की बात करते हैं, चाहे वो हमारे आईआईटीज हो, आईएमएस हो या फिर स्पेस रिसर्च की शुरुआत, इन सब की कल्पना नेहरू जी ने उसी दौर में कर ली थी। वो विश्व शांति और पंचशील के दूत थे। उन्होंने हमेशा नफरत को छोड़कर इंसानियत का रास्ता चुनने की सीख दी। आइए इस जादुई आवाज में सुनते हैं एक ऐसा गाना जो हमें हमारी आज़ादी और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है।

आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेहरू जी कुल 9 बार जेल गए थे साथियों, और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 9 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए। अहमदगढ़ किले की जेल में रहने के दौरान उन्होंने बिना किसी संदर्भ किताब के केवल अपनी याददाश्त और ज्ञान के दम पर भारत की खोज नामक महान पुस्तक लिखी। साथियों, नेहरू जी ने जेल की अंधेरी कोठरी को भी ज्ञान का मंदिर बना दिया और लिख दी वो किताब जिसने हमें हमारे महान इतिहास से रूबरू कराया।

चलते चलते घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आज के इस सफ़र को यहीं रोकना होगा। तो दोस्तों, चलते चलते आपको बता दूं कि पंडित नेहरू के काम करने की मेज़ पर हमेशा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पंक्तियां लिखी रहती थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। साथियों, ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि जब तक मंजिल ना मिल जाए, हमारे जीवन के लक्ष्य और देश या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो जाए, हमें रुकना नहीं चाहिए। जीवन की अंतिम सांस तक हमें कर्म करते रहना चाहिए।

पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें अपने पत्रों द्वारा ज़रूर बताएं। हमारा पता है आकाशवाणी भागलपुर, आदमपुर भागलपुर। हमारा पिन कोड है 8120001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है phairbhagalpur@gmail.com। तो दोस्तों, अपनी रेडियो दोस्त रिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

0: नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज के नारी लोक को आरंभ करने से पहले बता दें कि आज क्या खास है। बहनों, आज हम सुनेंगे वार्ता और फिल्म संगीत। आज की वार्ता का विषय होगा गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाले व्यंजन और कुछ पेय पदार्थ। वार्ताकार होंगी अमृता प्रीतम। और आइए अब शुरू करते हैं आज की चर्चा। बहनों, किशोर उम्र के बच्चों की परवरिश कोई आसान काम नहीं। इन बच्चों की परवरिश माता पिता के लिए चुनौती के समान होता है। यह समय इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव का होता है। इस समय इनके शरीर में बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हार्मोनल बदलाव के दौर से वे गुजर रहे होते हैं। ऐसे में ज़रूरत उन्हें सही राह दिखाने की है, ताकि वे भटकने से ही बचें और उनका जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। बहनों, इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि हम उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वतंत्रता दें मगर उन पर नज़र रखें, उन्हें सही गलत का फ़र्क समझाएं, उन्हें स्वतंत्रता की सीमाएं समझाएं, उन्हें सुनना शुरू करें और समझाने की कोशिश करें, संवाद को खुला रखें। ऐसी स्थिति हमेशा होनी चाहिए कि वे अपनी हर बात को कह सकें, उनकी गोपनीयता का सम्मान करें। यदि बहनों आपके घर में किशोर उम्र की बच्ची है तो उसे कुछ शिक्षा और दें, उसे गुड टच और बैड टच के फ़र्क को समझाएं, अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहार का फ़र्क उसे समझाएं। बहनों, बच्चों में आत्मविश्वास की भावना भरें। किसी भी बात को लेकर मन में हीनता बोध उनमें ना रहे, इस बात का ख्याल खास तौर पर करें। बहनों, यदि आपके बच्चे भी किशोर उम्र के हैं तो इन बातों का ख्याल रखकर आप उसके लिए बेहतर माता पिता, बेहतर मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती हैं। बहनों, अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख?
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल

0: से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: AIR at 90.
1: अंतराल के बाद बहनों, आइए अब सुनते हैं एक मनमोहक गीत। बहनों, बाहर वर्षा की रिमझिम फुहार से मौसम सुहाना है। तपती गर्मी के बाद होने वाली वर्षा मन को बहुत सुकून दे गई है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसा ही गीत जिसमें कोमल भावनाओं के साथ साथ इन रिमझिम बरसते बादलों की भी बात है।

0: बहनों, गर्मी के मौसम में अक्सर हम वैसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जिससे हमें ठंडक मिले, वैसे पेय पदार्थ या शरबत पीना चाहते हैं जो हमें तरावट के साथ साथ ठंडक भी दे। तो आइए, आज हम इसी विषय पर हम आपको आज की वार्ता सुनवाते हैं। आज की इस वार्ता का विषय है गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाले व्यंजन और पेय पदार्थ। वार्ताकार हैं अमृता प्रीतम। आइए इनसे इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: की रौनक, हमारी महिला श्रोता बहनों को नमस्कार। बहनों, मौसम बदल रहा है। मई जून आते ही पारा 45 डिग्री पार कर जाता है। इस बढ़ती गर्मी में हमें परिवार अपने बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। उनके खान पान की विशेष ध्यान रखनी होती है। हल्के भोजन और गर्मियों के ठंडक प्रदान करने वाले व्यंजन एवं पेय पदार्थ देना चाहिए ऐसे दिनों में। बहनों, ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट, स्वास्थ्य वर्धक एवं सुपाच्य व्यंजनों एवं पेय पदार्थ की पाक विधि बताने जा रही हूँ जो कम समय में फटाफट बन जाए। जैसे सौंफ की शरबत, इसमें ना तो ज्यादा समय लगता है और ना ही गैस जलाने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसमें उपयोग होने वाली सारी सामग्रियों को जान लेते हैं। इसके लिए हमें लेने होंगे आधा किलो धागे वाली मिश्री, चाहे तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, 5 से 6 हरी इलायची, आधा कप पतली वाली सौंफ क्योंकि इसमें थोड़ी मिठास के साथ साथ थोड़ी खुशबू होती है, 2 बड़े चम्मच गुलकंद, 100 ग्राम देसी गुलाब की पत्तियां, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लें अथवा इसे छोड़ भी सकते हैं, 6 से 7 हरे पान की पत्तियां, ध्यान रहे हरे पान की पत्तियों को ही लेनी है क्योंकि पीले पान की पत्तियों में वो ठंडी तासीर कम होती है। आइए बनाने की विधि को भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम धागे वाली मिश्री से धागे को अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। इसे एक मिक्सचर जार में इलायची के साथ बारीक पीसकर एक बाउल में अलग रख लेंगे। अब हम सौंफ लेंगे, इसे आप अच्छी तरह से धोकर 6 से 7 घंटे के पहले भिंगोने के लिए छोड़ दें। भिंगोने से एक तो यह दुगनी हो जाती है मात्रा में, साथ ही इसकी खुशबू भी दुगनी हो जाती है। इस भिगोए हुए सौंफ को पानी से अलग कर मिक्सचर जार में गुलकंद, गुलाब की पत्तियां और पान के पत्ते के साथ बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसी मिश्रण को मिश्री वाले पाउडर में छानकर अच्छी तरह से मिला लें ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए। अब इसमें 1 कप जितना पानी मिला लें। याद रखें, इसे पतला नहीं गाढ़ा ही रखना है। इस मिश्रित पेय को साफ बॉटल में 8 से 10 दिनों तक आप अपने फ्रिज में रख सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। जब आपका मन करे एक ग्लास ठंडा पानी लें, उसमें 1 बड़ा चम्मच यह मिश्रण का स्क्वैश मिलाएं, साथ ही 2-3 बर्फ के टुकड़े डालकर पेस्ट करें और इसका आनंद उठाएं। आप चाहें तो इसे ठंडी दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस शरबत में जितनी भी सामग्री उपयोग हुई है उन सब की तासीर बिल्कुल ठंडी होती है जो शरीर को ठंडा रखता है। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे रेसिपी पर जो है तरबूज का शरबत। इसे वाटरमेलन कूलर भी बोला जा सकता है। तरबूज गर्मियों का सबसे लोकप्रिय फल है जिसमें भरपूर मात्रा में पानी तो होता ही है, साथ ही ये शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखता है। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 2 कप तरबूज के टुकड़े, थोड़ा काला नमक, थोड़ी सी मिश्री या गुड़, क्योंकि तरबूज मीठा होता है तो आप चाहें तो मिश्री या गुड़ ले सकते हैं अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, 1 चम्मच नींबू का रस, पुदीने के कुछ पत्तियां, बर्फ के टुकड़े। बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के बीज को तरबूज से अलग कर लेंगे। अब एक मिक्सचर जार में तरबूज, काला नमक, थोड़ी सी मिश्री, नींबू का रस और पुदीने की पत्तियों को डालकर पीस लें। अब इसे छानकर बर्फ के टुकड़ों के साथ एक ग्लास में ठंडा ठंडा सर्व करें। यह पेय पीने वाले को तुरंत ताजगी देता है। गर्मियों का मौसम हो और आम की बात ना हो तो कुछ खालीपन सा लगता है। आम एक ऐसा फल है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पसंद आता है। तो चलिए आम से बनी कुछ सेक को भी जान लेते हैं। तो आम से बने एक पसंदीदा सेक को बना लेते हैं। यह सेक बहुत ही कम सामग्री में एक हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए हम 2 पके हुए आम लेंगे, 2 ग्लास ठंडी दूध, 1 बड़े चम्मच चीनी, मिश्री या गुड़ जो आप लेना चाहें, और सर्व करने के लिए कुछ बर्फ के टुकड़े। विधि को जान लेते हैं। आम को अच्छी तरह से धोकर गुठलियों से अलग कर लें। अब आम के गूदे को मिक्सर जार में दूध चीनी के साथ पीस लें। इसे निकालें ग्लास में और ठंडा ठंडा बर्फ के टुकड़ों के साथ इसे सर्व करें। पेय की तो बात हो गई, अब आते हैं खाने पर। आज जो मैं बताने जा रही हूँ यह बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है, साथ ही हल्की और सुपाच्य भी होती है। नाम मिनी इडली है। तो इसमें उपयोग होने वाली सारी सामग्रियों को जान लेते हैं। चार से पाँच घंटे भिगोई हुई मूंग की दाल 250 ग्राम, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, हींग थोड़ी सी चुटकी भर, साबुत जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, बेकिंग सोडा, हरी धनिया की पत्तियां, कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, 2 से 3 कटोरी दही। आइए बनाने की विधि को भी जान लेते हैं। सबसे पहले भिगोई हुई मूंग की दाल को पानी से अलग कर मिक्सर जार में डालकर अदरक और 2 हरी मिर्च के साथ बारीक पीस लें। अब इस पीसे हुए मिक्सचर को बाउल में निकाल कर इसमें चुटकी भर हींग, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और छोटी चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब अगर आपके पास इडली के सांचे हो तो उसमें या किसी प्लेट या छोटी कटोरी में भी इस मिश्रण को डाल के 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लें। जब ये अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाए तो इसे हल्के गर्म पानी में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। इन्हीं मिनटों में एक मिक्सर जार में दही, हरी मिर्च 1 से 2, 1 से 2 कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत जीरा, मिर्च आप चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं, बच्चों के हिसाब से आप इसमें डालें। अब इस दही के मिश्रण में चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, धनिया की पत्तियों को बारीक काटकर मिला लें। अब इस दही वाले मिश्रण में सारी मिनी इडलियों को पानी से निकाल कर डाल दें। इडलियों को दबाकर इससे पानी अच्छी तरह से निकाल लें। इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसे ठंडा ठंडा पेश करें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे व्यंजन की ओर। इसे आप बनाकर 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। बनाना भी बहुत आसान है। इस व्यंजन का नाम है नमकीन करारे। इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप सूजी, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, करी पत्ते, धनिया की पत्तियां, स्वादानुसार नमक, मिर्च और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 2 से 3 बूंद तेल। इसे बनाने की विधि है, सबसे पहले कढ़ाई में 4 कप पानी डालकर गैस पर गर्म होने दें। ध्यान रहे हम जितनी सूजी लेते हैं उसका दुगना पानी लेते हैं। जैसे कि मैंने 2 कप सूजी बताया तो उसके लिए मैंने 4 कप पानी यूज़ किया। आप अपने हिसाब से सूजी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पानी में कलौंजी, साबुत जीरा, स्वादानुसार नमक, अदरक मिर्च का पेस्ट और 2 से 3 बूंद वनस्पति तेल डालकर उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें करी के पत्ते और धनिया की पत्तियों को बारीक काटकर डाल दें और सूजी भी इसमें धीरे धीरे डालते हुए चलाते रहें। तब तक चलाएं जब तक कि ये सारा पानी सोख ना लें। जब सूजी गूथे हुए आटे जैसा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर आप जो भी आकार देना चाहें उसे दे सकते हैं। मैं इसे थाली में फैलाकर डायमंड का आकार देती हूँ, आप जो भी आकार देना चाहें इसे दे सकते हैं। यह जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो एक एयर टाइट डब्बे में बंद कर इसे फ्रिज में रख दें। अब जब भी मन हो तो इसे निकाल कर ऐसे भी या तल कर सॉस के साथ सर्व करें। तलने से यह थोड़ी कुरकुरी हो जाती है जिससे बड़े और बच्चों दोनों को बहुत पसंद आता है। इसे एक बार जरूर बनाएं, आपके परिवार वाले बार बार इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। पेय तरल पदार्थ और व्यंजन तो हो गया, अब कुछ मीठा हो जाए। मैं जिस मिठाई की विधि बताने जा रही हूँ इसमें भी गैस जलाने और पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। कम मेहनत में बिना गैस जलाए भी काम हो जाता है। तो बिना समय गवाए इस मिठाई को बनाने की विधि जान लेते हैं। इसकी सामग्री को जान लेते हैं। इसके लिए हमें लेने होंगे 1/2 कप भुना चना बिना छिलके वाली, 20 से 25 काजू, 10 से 15 बादाम, 50 ग्राम भुना पोहा, 150 ग्राम धागे वाली मिश्री, 50 ग्राम मिल्क पाउडर, 2 से 3 चम्मच दूध और 2 से 3 हरी इलायची। सबसे पहले मिश्री को धागे से अलग कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब सभी सामग्री चना, काजू, बादाम, पोहा, मिश्री, मिल्क पाउडर और इलायची को मिक्सर जार में डालकर तब तक पीसेंगे जब तक कि यह बारीक ना हो जाए। अब इसे किसी बर्तन में निकालकर 2 चम्मच दूध से गूंथ लें, जैसे हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं। फिर आप अपने पसंद का आकार देकर मिठाई तैयार करें और ऊपर से चांदी का वर्क और कटा हुआ पिस्ते से सजाएं। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और खाने में बहुत ही हल्की होती है। आप इसे फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रखकर इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए चलते चलते कुछ चटपटा तीखा सा कुछ हो जाए। चटपटे की बात आए तो गर्मियों में अचार की बहुत याद आती है, पर अचार बनाने में कई दिन लग जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ वो सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको लेनी होगी 2 कच्चे आम, 10 से 15 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 50 ग्राम अदरक, मसाले के लिए साबुत जीरा, मोटा वाला सौंफ, राई और मेथी को हल्का भूनकर पाउडर बना लें। स्वादानुसार नमक, चुटकी भर हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 2 कप जितना सरसों का तेल। सबसे पहले इसके लिए आम को अच्छे से धोकर इसके छिलकों को हटा दें। फिर चॉपर में छोटे छोटे टुकड़े कर इसे बारीक चॉप कर लें। इसी प्रकार अदरक और मिर्च को भी दरदरा पीस लें। अब सारी चीजों को एक बर्तन में डालकर सभी मसालों का पाउडर, थोड़ी सी हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब 2 कप सरसों के तेल को गर्म करें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब तेल ठंडा हो जाए तो उस मिश्रण में इसे मिला लें। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे एक कांच के जार में आप डालकर रख लें और महीनों तक इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसे थोड़ी थोड़ी धूप भी बीच बीच में दिखा सकते हैं। तो है ना ये सारी व्यंजन झटपट बनने वाले और स्वादिष्ट। अब गर्मियां सताएंगी नहीं बल्कि गर्मियों का आनंद लेंगे।
0: अभी बहनें सुन रही थी वार्ता। आज की इस वार्ता का विषय था गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाले व्यंजन और पेय पदार्थ। वार्ताकार थी अमृता प्रीतम। इस वार्ता के बाद बहनों, अभी जहां बादल झूम कर बरस गए हैं और मौसम कुछ सुहाना हो गया है, बहनों बादल तो अपनी लय में बरसते चले जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसक छोड़ जाते हैं जो अनायास ही हमारी आंखों से के रास्ते बह निकलते हैं। तो आइए कुछ इसी तरह का गीत हम चलते चलते सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नारीलोक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता थी श्री पार्वती के। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाजिद जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
6: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
5: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
6: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
5: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
6: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
5: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
6: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
5: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
6: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
5: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
6: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
5: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
3: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
5: मश्क।
4: होशियार,
5: समझदार,
4: पेंसिल तराश,
5: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
4: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
5: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
2: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
7: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
8: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
7: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
8: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
7: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
9: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
10: क्या बात है,
9: सुनकर ही जोश आ गया।
10: हाँ
9: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
10: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
5: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है
8: दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
11: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
12: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
13: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
14: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
13: अरे देख लेंगे।
12: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
7: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
11: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
15: क्या बात कही है?
7: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
11: धन्यवाद।
12: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3, टाइगर हिल्स, पिंपल पोस्ट, 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिने तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, नहीं। तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
4: मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 1 बजे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज लोक रंग के गायक कलाकार हैं विवेकानंद वीरेंद्र कुमार ठाकुर। कार्यक्रम के आरंभ में इनके स्वर में सुनिए भजन।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: लोकरंग कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन पाएंगे 1:20 पर। अभी समय है प्रादेशिक समाचार का, इसे हम रिले कर रहे हैं हमारे रांची केंद्र से।

0: इसमें भी शिल्पी नेहा तिर्की जी को राजनीति सोचता है, जो कि ये किसी का एजेंडा को चलाने का काम करती है, इसलिए ये बात करती है। ये बोलते हैं आदिवासी सनातन नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी सनातन नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि देश भर के आदिवासी का अगर कोई देव है, कोई आराध्य देव है, आदिकाल से जो रहते आ रहे आदिवासी का कोई देव है तो वो आदिदेव महादेव है।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे रांची में राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सरकार के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में युवाओं और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प से बड़े लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इसी भावना के साथ देशवासी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। राज्य में जल्द ही आधुनिक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पहल से प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती तथा सुरक्षित यात्रा मिलेगी। योजना के तहत बुजुर्गों, छात्रों और जरूरतमंदों को मुफ्त या रियायती सफर की सुविधा दी जाएगी, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गुमला जिले की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना ने उनकी जीवन शैली बदल दी है। अब लकड़ी के चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिल गई है, जिससे समय की बचत और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।
2: उज्ज्वला योजना बहुत ही हम लोग को लाभदायक हो रहा है। हम लोग लकड़ी झूरी से बाज हो गए हैं और अच्छा से बच्चा लोग को स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा से खाना पीना टाइम से दे सक रहे हैं, हम लोग भी खा के अपना काम जा सक रहे हैं। नहीं तो बरसात में हम लोग दिक्कत हो जाता था, लंच नहीं बनता था, बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहा था। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके टीम को भी धन्यवाद देती हूँ।
1: हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव में एक सेफ्टी टैंक के भीतर दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बेहोश है। पुलिस के अनुसार पुलिस के डर से टैंक में अवैध महुआ शराब छिपा कर रखी थी। देर रात उसे निकालने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया।
3: अचानक 10 बजे रात में हमको फोन आया कि सेफ्टी टैंकी में कुछ लोग गिर गए हैं, तो देखे कि 3-4 लोग गिरे हुए थे, तो उसमें फिर बहुत लोग बचाने का प्रयास किया और चारों को वहां से निकाला गया। फिर उसको हम लोग सदर अस्पताल लेकर तुरंत गए, 3 लोगों को डॉक्टर साहब ने घोषित बता दिए और एक अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनका जो भर्ती है।
1: धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में स्थित मिठाई की एक दुकान में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालक के अनुसार इस घटना में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई है। शुरुआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक की वृद्धि के साथ 23,941 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,73,000 रुपए प्रति किलो है। रांची की नीतू कुमारी महतो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर बन गई हैं। वह झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर हैं। नीतू 29 मई से 6 जून तक जापान में होने वाले अंडर-18 एशिया कप में एम्पायरिंग करेंगी। हॉकी झारखंड ने उनकी इस बड़ी सफलता को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR अभियान को ठहराया पूरी तरह वैध। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से की मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए देशवासियों से की बड़ी अपील। दोपहर में बाहर ना निकलने और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखने की दी सलाह। राज्य कैबिनेट की आज शाम 4 बजे से रांची में होगी अहम बैठक। विभिन्न विभागों के कई नए प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। हजारीबाग में बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक से अवैध महुआ निकालने के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और रांची की नीतू कुमारी महतो बनी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर। जापान में अंडर-18 एशिया कप में करेंगी एम्पायरिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम का शेष भाग। गायक कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर। इनसे सुनिए शिव भजन।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न होता है। गायक कलाकार थे वीरेंद्र कुमार ठाकुर। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, समय हर रोज बदलता है और हमारी उम्र भी बढ़ती है। बहनों, वैसे तो समय के साथ हमारे शरीर की खान पान संबंधी ज़रूरतें तो बदलती ही है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, लेकिन महिलाओं की ज़रूरतें थोड़ी अलग होती है और थोड़ी ज़्यादा भी होती है। तो बहनों, आज इसी विषय पर अभी हम बात करेंगे। बहनों, बढ़ती उम्र जीवन की एक स्वाभाविक और सुंदर प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल, शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। 40 और 50 की उम्र के बाद, विशेषकर मेनोपॉज, जिसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, उसके आसपास महिलाओं के शरीर को अतिरिक्त देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। इस उम्र में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और बहनों, जब बात गर्मी की मौसम की हो तो यह चुनौती और भी बढ़ जाती है। तेज़ धूप, उमस और गर्म हवाएं, जिसे हम लू भी कहते हैं, बढ़ती उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती है। इस मौसम में हॉट फ्लैशेज, यानी कि अचानक बहुत तेज़ गर्मी और पसीना आना जैसी समस्याएं भी गंभीर रूप से परेशान करती है। इसलिए एक संतुलित खान पान और अनुशासित दिनचर्या को अपनाकर महिलाएं इस उम्र में भी ऊर्जावान, स्वस्थ और खुशहाल रह सकती हैं। तो बहनों, बढ़ती उम्र में महिलाओं का खान पान क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। 35 या 40 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं के शरीर को कैलोरी की कम लेकिन पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मी के दौरान खान पान में शीतलता और पोषण दोनों का संतुलन होना अनिवार्य है। उम्र बढ़ने के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर जो है वो महिलाओं में कम होने लगता है, जिससे हड्डियों का घनत्व, जिसे बोन डेंसिटी कहते हैं, वो घटने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो बहनों, इससे बचने के लिए दूध, दही, छाछ, पनीर, रागी और हरी पत्तेदार सब्जियां गर्मी के मौसम में दोपहर के समय ताज़ा दही या जीरा पुदीना डालकर बनाई गई छाछ का सेवन वरदान साबित होता है। यह ना केवल कैल्शियम देता है बल्कि पेट को भी ठंडा रखता है। बहनों, कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी है, तो सुबह में हल्की धूप में 10 या 15 मिनट अवश्य बैठें या डॉक्टर की सलाह पर कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट भी आप ले सकती हैं। साथ ही बहनों, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि गर्मियों में बढ़ती उम्र की महिलाओं को डिहाइड्रेशन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। प्यास ना लगने पर भी नियमित अंतराल पर तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए। इसके अलावा दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए। नारियल पानी, नींबू पानी, आम का पन्ना, बेल का शरबत और सत्तू का शरबत बेहतरीन विकल्प है। बहनों, सत्तू ना केवल शरीर को ठंडा रखता है बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। बहनों, क्या लें इसके साथ साथ क्या ना लें, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि चाय, कॉफ़ी या पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन न्यूनतम करें या ना करें, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन और शुगर शरीर को ज़्यादा डिहाइड्रेट करते हैं। इसके अलावा बहनों, गर्मियों के मौसम में प्रकृति हमें ऐसे फल देती है जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ये त्वचा में चमक बनाए रखते हैं और बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा करते हैं। फल में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर और आम सीमित मात्रा में, तथा तरबूज और खीरा शरीर का पानी का स्तर बनाए रखते हैं, तो इन फलों का सेवन जरूर करें। सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, कद्दू और पुदीना, ये सब्जियां पचने में बेहद हल्की होती है और पेट को शांत और ठंडा रखती है। साथ ही बहनों, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त भोजन भी मांसपेशियों की कमजोरी को रोकने के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने आहार में दालें, स्प्राउट मीन्स अंकुरित अनाज, सोयाबीन और टोफू और अंडे को शामिल करें। इसके अलावा अलसी के बीज, शिया सीड या अखरोट खाएं। यह जोड़ों के दर्द को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बहनों, बढ़ती उम्र में पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा तला भुना, तीखा, मसालेदार भोजन और मैदे से बनी चीज़ों को
चीज़ों से परहेज करें। यह शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और एसिडिटी का कारण बनते हैं। बहनों, खान पान के अलावा हमें सही दिनचर्या का होना, व्यायाम करना, ये सब भी आवश्यक है। साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शाम के समय में खुद को सोशलाइज करें, थोड़ा अपनों से मिलें, बातें करें, सहेलियों से गाना सुने, क्योंकि तभी आप मन से स्वस्थ रह पाएंगी। इसी के साथ बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ संदेशों को।

0: AIR at 90.
1: बहनों, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, क्यों ना कार्यक्रम में गीत संगीत की शुरुआत एक शिव भजन से की जाए। तो सुनते हैं यह शिव भजन।

0: बहनों, इस बहुत ही सुंदर से शिव भजन के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, हमारे समाज में बेटी और बेटों के बीच अभी भी भेदभाव किया जाता है, और कभी अगर बात पीछे की करें तो कभी भी बेटियों को बेटों के बराबर नहीं समझा गया है। इससे ना केवल हम एक समाज के रूप में पिछड़ते जा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो कोई ह्यूमन राइट्स होता है, जो एक इंसानियत होती है, वो उसमें भी हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। तो बेटी को बचाना भी ज़रूरी है और बेटी को पढ़ाना भी, जिससे कि समाज में जो एक रूपता है, एक समानता है, इक्वलिटी है, वो आए। तो क्यों ना इसी बहाने, इसी से जुड़ा हुआ एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं। वार्ता का विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वार्ताकार हैं करुणा झा।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई है, और जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों के प्रारंभ किया गया है। सभी राज्यों में संघ सशक्ति क्षेत्रों को कवर कर 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ 100 जिलों का एक पायलट जिले के रूप में चयन किया गया है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पर सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत बढ़ती जनसंख्या के बावजूद लड़कियों का अनुपात घटता जा रहा है। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार हर 1,000 लड़कों पर 927 लड़कियां थीं। हालांकि 2011 की जनगणना में ये आंकड़े 943 लड़कियां पर आ गई है। क्या आपको पता है यूनिसेफ ने भारत को बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स से रेशियो में 195 देशों में से 91 स्थान दिया गया है, यानी कि हम लिंग अनुपात में 40 देशों से पीछे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ये उद्देश्य हैं: पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं के शोषण से बचाना व उन्हें सही या गलत के बारे में अवगत करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रोका जा सके। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है। रणनीतियाँ बालिका एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन, समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन करना, इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना और उसे संशोधित करने रहना सुशासन का पैमाना बनेगा। निम्न लिंगानुपात वाले जिलों की पहचान कर ध्यान देते हुए गहन और एकत्रित कार्रवाई करना सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थानीय महिला संगठनों, युवाओं की सहभागिता लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकाय और जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक की भूमिका में ढालना। जिला, ब्लॉक, जमीनी स्तर पर तंत्र स्तरीय क्षेत्र पर अंतर संस्थागत समायोजन को समक्ष करना है। लड़कियों की दशा को सुधारने और उन्हें महत्व देने के लिए हरियाणा सरकार 14 जनवरी को बेटी की लोहड़ी नाम से एक कार्यक्रम मनाती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है, जिससे वो अपने उचित अधिकार और उच्च शिक्षा का प्रयोग कर सके। आम जन में जागरूकता फैलाने में ये मदद करता है। साथ ही महिलाओं को दिए जाने वाले लोक कल्याणकारी सेवाएं की कुशलता को भी बढ़ावा देगा। कहा जाता है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। ये आपकी और मेरी कही हुई बात नहीं है, वरन देव वाक्य है। फिर भी इस ध्रुव सत्य पर उपेक्षा के बादल सदियों से मंडराते आ रहे हैं। विषय पर आधुनिक पक्ष की ओर विचार कर रहे हैं तो मुझे एक तरफ यह जानकर खुशी होती है कि नारी सशक्तिकरण

0: लोग असीम हैं जो सृष्टि की संरचना में आधी भूमिका निभाने वाले महीयसी महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए कार्यरत है। दूसरी तरफ यह सोचकर मुझे काफ़ी दुख होता है कि भारत जैसे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह बताने की ज़रूरत है कि नारियों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगों के जहन में ये साधारण सी बात क्यों नहीं आती है कि उनके अस्तित्व में आधी साझेदारी स्त्री की ही है, और अगर वो इस विषय पर और विचार करें तो वे यह भी जान पाएंगे कि अगर उनके व्यक्तित्व में कहीं भी कुछ भी कभी रह गई है तो इसके पीछे एकमात्र कारण उनसे जुड़ी स्त्रियों के अधिकारों का हनन है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कन्या शिशु बचाओ के साथ साथ इनका समाज में शस्त्र सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। लड़कियों को उन माता पिता द्वारा लड़कों के समान समझना चाहिए और उनके सभी कार्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने चाहिए। हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी मैं, अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी। चंद लोगों की पुकार सुन ली, मेरी पुकार न सुनी तो मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं बेटी हूँ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बहनों, इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत सभी को, आरू का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे घर आंगन कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 2 बजने ही वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR को वैध और संवैधानिक करार दिया है।

0: कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। श्री कुमार ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर को वैध करार देने के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं को देश की जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नालंदा जिले के एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के बाद 60 छात्रों के बीमार होने की घटना की एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए जिलाधिकारी से 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज शाम 5 बजे पटना में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज ई मापी और अभियान बसेरा के लंबित मामलों का तेजी से निपटारे का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी। श्री जायसवाल ने किसान पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन के भी निर्देश दिए हैं। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब राज्य के नगर निकायों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर शिविर की तैयारी का निर्देश दिया है। पंचायतों की तरह नगर निकाय क्षेत्रों में भी प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि सभी कुलपति हर महीने कम से कम 2 बार अंगीभूत कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में सभी कुलपतियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण बिहार का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआ बाग स्थित नया टोला में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति गंभीर रूप से घायल हैं। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना और नियमित कॉडर की भर्ती के लिए वर्ष 2027 की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 1 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा संबंधी निर्देश पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा।

की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा।

0: कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था

0: लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी

0: कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: Akashvani at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। श्रोताओं, आपको हम सुनवा रहे हैं वेलकम फिल्म का यह गीत, जिसे शुरू से सवारा है आनंदराज आनंद और साथियों ने।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 3 बज रहे हैं। प्रस्तुत है रविंद्र संगीत कार्यक्रम।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं रविंद्र संगीत कार्यक्रम। गायक कलाकार हैं कणिका बनर्जी।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

रविंद्र संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। कलाकार थे कनिका बनर्जी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 3:20 हुए हैं। सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर संध्या 5 बजे तक हमारे इन मीटरों पर आप सुन पाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम को।

0: लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। ये शहरों में छोड़ दीजिए, गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं, हाँ, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे
1: तो
0: गेम बना रहे हैं ना वो लोग,
1: जी,
0: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहें, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है,
1: हाँ,
0: वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके की गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
1: तो ये
0: फायदा
1: और
0: हो।
1: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली
0: जी
1: चीजें
0: हाँ।
1: हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब
0: बिल्कुल।
1: चीजों से
0: और
1: ना
0: सबसे बड़ी
1: फंसे।
0: बात है दीपा, कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार। जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था। तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था। सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी। जब से आई नेट की आंधी, सब उसमें उड़ चले। इससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी, लेकिन रातों को भी बतियाते हैं। डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं। बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे आते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
1: क्या बात
0: बढ़िया,
1: है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
0: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल।
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़े ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है,
0: बिल्कुल।
1: कि वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पर नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब तक आप
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल
1: करना के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया, अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये,
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए और सच्ची आलोचना

0: वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
1: तो अब क्या करना चाहिए?
0: एक गिफ्ट सुनना चाहिए।
1: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए, क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है, जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं, चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत।

0: का विविध भारती के स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है, और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फ

0: मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ, और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में है आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: बनारस के पास पहले बनारस होता था, अभी
0: जी
1: वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया, और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था, तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं, और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहां से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफी सीरियस स्टडीज और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है, और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूं उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आंखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है, जो आपके मेडिकल के द्वारा

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय

0: गए को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है. तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे. तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं. क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है. और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है. डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में. गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं. वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया. तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है. आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको पावर करती है. पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनकी एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे. बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा. बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी, ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे. ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है. वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से. तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे.
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है. इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है. तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ, गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं. शुरू किया था फीमेल फेटिसाइड से, स्किलिंग से, सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ, जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अप के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है. ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे

0: कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंडराइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा। और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में हैं वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है।
1: अच्छा,
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। तीन
1: वाह
0: से 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप
1: बिल्कुल
0: उसे प्ले
1: सुनते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं।

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रोका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स, तो यू नो उस टाइम जो इसका है। तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी MOS की मिनिस्टर थी, तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
0: जी,
1: तो ये सर्टिफाइड

0: तो ये जेन्युइन डर था, तो मैंने बोला देखो अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1 2 3, 1 में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो। डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं। या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया @gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहां पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में एक गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो वैसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था
1: वाह वाह,
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रांग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है, आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने की, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
0: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलोअप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी

0: लेडी की बात में या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था।
1: ओह
0: लेकिन
1: गॉड,
0: उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब से आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट न हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव, एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिस डायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो
1: जी
0: इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफेक्ट हुए,
1: जी
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के, वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इश्यू, ये मेरे घर की नहीं है, ये हर घर की है, क्योंकि
1: जी
0: उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो
1: यस
0: वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया, और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट,
1: यस
0: उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम करी, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गेन्स पे डैमेज करके चली आई हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहां एक और गाने की जगह है और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है, जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक
1: जी
0: डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है। वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो
1: जी
0: उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये
1: क्या
0: गाना मुझे
1: बात है,
0: बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही गाना।

डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की, जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे

0: ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो.
0: अच्छा,
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो. आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम. बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो, द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस. एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो. सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग. सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट इस ऑफ सॉन्ग है. बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली. अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी. मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं. ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी.
0: जी बिल्कुल. तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं. मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं. 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है. पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में. और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में. और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया, जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें. और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं. और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए. तो ये बहुत बड़ा चीज है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए. बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू सो मच.
0: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से. रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल भदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के मेहमान.

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: मैं हूं जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूं कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूं, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूं। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें? राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हाजिर हैं हम लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता युववाणी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी हमारी तरह कुशल मंगल होंगे। आज बुधवार है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा को जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे चर्चा से, फिर आपको मार्गदर्शन के स्तंभ में भेंट वार्ता सुनाएंगे, डेली ट्रिविया के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे आपसे, रोचक तथ्य बताएंगे आपको, प्रश्न मंच के स्तंभ में चंद सवाल पूछेंगे आपसे एवं अंत में समसामयिकी। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं चर्चा से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरीद पर एवं जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि हर साल 27 मई को मनाई जाती है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने देश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधारशिला रखी। नेहरू जी को बच्चों से गहरा लगाव था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही देश का भविष्य है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांतों के जरिए विश्व शांति को बढ़ावा दिया। 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उनके अमूल्य योगदान, लोकतांत्रिक मूल्यों और दूरदर्शी सोच को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के विषय में केवल इतना ही। बात करते हैं बकरीद पर। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा भी कहता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख और

0: नए कपड़े पहनकर मस्जिद या ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद बकरे या अन्य हलाल जानवर की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के मांस को शरीयत के नियम के अनुसार 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। यह त्यौहार हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना और आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना सिखाता है। दोस्तों, आज चर्चा में केवल इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: AIR@90.
1: अंतराल के पश्चात कार्यक्रम में पुनः स्वागत है दोस्तों। हम आपसे अब डेली ट्रिविया के अंतर्गत एक प्रश्न पूछेंगे। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? आप तब तक इसका उत्तर सोचें और ले एक मधुर गीत का आनंद। गीत है ओ मेरी जान, फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से गायक कलाकार है KK।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत ओ मेरी जान, फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से। गायक कलाकार थे के। बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ रोचक तथ्य की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था? दोस्तों, रोचक तथ्य में केवल इतना ही। सुनिए एक और मधुर गीत। गीत का नाम है जुनून। फिल्म है न्यूयॉर्क। गायक कलाकार है के।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत है जुनून, फिल्म न्यूयॉर्क से गायक कलाकार थे के। बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ की ओर, प्रश्न मंच की ओर। इससे पहले हम आपको डेली ट्रिविया के अंतर पूछे गए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। प्रश्न था, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है जनवरी 1976। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमारे साथी आमिर अंसारी ने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, चलिए आज हम भी आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर आप हमें अपने ईमेल या पत्र द्वारा भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com पर। पता है आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, युववाणी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक, पिन कोड संख्या है 81201। दोस्तों, प्रश्न है, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज CTFS स्थापित करने की मंजूरी कहाँ दी है? आप इसका उत्तर सोचें और ले एक मधुर गीत का आनंद। गीत है वेल्ले, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से गायक कलाकार है विशाल शेखर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत। गीत का नाम था विल्ले, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। गायक कलाकार थे विशाल शेखर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ समसामयिकी की ओर। हाल ही में मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत दिल्ली में की गई। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर वॉल का उद्घाटन रांची एयरपोर्ट पर किया गया। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडर वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रेन मुंबई NCDEX संस्था ने लॉन्च किया। VD सतीशन ने केरला राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। दोस्तों आज समसामयिकी में केवल इतना ही।

0: दोस्तों आइए सुनते हैं अब हम ज्ञानवर्धक भेंटवार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे आज के युवाणी कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक उभरते हुए कलाकार हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जिनका नाम है अमन कुमार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से।
2: मेरा नाम अमन कुमार है और मैं रनु चकमकनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 2018 से संगीत सीखना शुरू किया और उससे पहले मैं थोड़ा बहुत गाता था।
1: आपने गायन को ही अपने करियर के रूप में क्यों चुना?
2: क्योंकि मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो उसमें तक मेरी भी हॉबी थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मैं उसके लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने स्कूल में और एक सरकारी संस्था है किलकारी, वहाँ पे जाके बहुत सारे सर को सुना और कहीं ना कहीं मुझे संगीत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में रह कर मैं ज़्यादा खुश रह पाऊँगा। और कहते हैं कि जहाँ पे आपका दिल और दिमाग दोनों मिल के काम करे वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, तो इसलिए मैंने गायन को ही अपना करियर चुनना पसंद।

0: पसंद किया।
1: संगीत सीखने की प्रेरणा आपको किन से मिली?
0: मैं जब 9वीं में पढ़ता था तो मैं एक बार बस ऐसे ही अपने अंकल के यहाँ गया, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो बैठ के रियाज़ कर रहे थे। उसमें मुझे संगीत के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गाते थे। तो वहाँ पे जब गए तो भैया लोग से मिले, तो उन लोग को गाते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किलकारी में एक सर नीतीश रंजन सर, तो उन लोगों को सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी संगीत करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोग से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी संगीत सीखूं। और मैं अपना आइडियल अरिजीत सिंह जी को मानता हूं और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूं।
1: संगीत में लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और भी कई प्रकार के संगीत होते हैं, तो आपने सुगम संगीत को ही क्यों चुना?
0: मैंने सुगम संगीत को चुना क्योंकि आप कोई भी संगीत गाओ, चाहे वो सुगम संगीत हो, लोक संगीत हो, आपको शास्त्रीय सीखना ही पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत सीखे बिना आप कोई संगीत नहीं गा सकते हो, चाहे आप कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते हो। तो मैंने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली है और ले भी रहा हूँ, पर युवा उत्सव में मैंने सुगम संगीत में प्रस्तुति की और कहीं ना कहीं जज को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे पुरस्कृत किया जाए।
1: आप हमारे अभी के संगीत के जो इच्छुक हैं, जो कि सीख रहे हैं, उनको रियाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि रियाज की क्या महत्ता है संगीत के क्षेत्र में?
0: जो संगीत सीख रहे हैं उनको रियाज करना ही पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है, बहुत गुरुओं का मानना है, यदि आप एक दिन रियाज छोड़िएगा तो आप बहुत दिन पीछे चले जाइएगा। संगीत किन्हीं के हाथ में बसा नहीं रहता, जब आप रियाज करके अपने आप को वैसा बना लेते हैं तो ही आप संगीत के द्वारा अपने सामने वाले को मोहित कर सकते हैं, या फिर उनको संगीत के माध्यम से उनको अपनी बात प्रकट करके बता सकते हैं। तो रियाज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप रियाज कितना भी देर कीजिए लेकिन नित्यदिन रियाज कीजिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा।
1: संगीत का रियाज आप किस प्रकार करते हैं?
0: मैं सबसे पहले सुबह सुबह तो जो प्रातः काल का राग है, राग भैरव से अपने रियाज की शुरुआत करता हूँ, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे सुर साधना करता हूँ, और उसके बाद विभिन्न तरह के रागों को गाता हूँ और अलंकारिक तान वगैरह का रियाज करता हूँ।
1: सुगम संगीत के अंतर्गत आप कौन कौन से गीत गाते हैं?
0: सुगम संगीत के अंतर्गत मैं भजन में, जैसे राग दरबारी का एक भजन है, जो गुरु कृपा करे, ये गाता हूँ, और एक और भजन है, हमारो निर्धन के धनराम, वो गाता हूँ। राग नंद में एक भजन है, नारायण जिनके हृदय में, और राग अहिर भैरव में एक बहुत ही सुंदर रचना है, रहना नहीं देश वीराना है, और एक राग अहिर भैरव में एक और रचना है, राम का गुणगान करिए, ये सब भजन गाता हूँ। और गज़ल में बहुत सारे गज़ल हैं जो कि मैं गाता हूँ।
1: आप पढ़ाई और संगीत को साथ साथ लेकर जो चल रहे हैं, तो क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं या फिर आप दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं, उस बारे में कुछ बताइए।
0: मैं 10th के बाद मैंने संगीत को अपना क्षेत्र माना, और 10th करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इस क्षेत्र में भी आगे मैं बढ़ सकता हूँ, यदि अच्छे गुरु मिले तो उनके पास जाऊँ तो उनसे सीख सीख के मैं संगीत के क्षेत्र में भी आगे कर सकता हूँ, इनमें भी कहीं ना कहीं कैरियर बना सकता हूँ। तो उसके बाद से मैंने संगीत के क्षेत्र में पहला कदम रखा, और 10वीं से लेकर 12वीं तक मुझे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि इंटर का भी एग्ज़ाम, उसकी भी पढ़ाई, और इंटर मैंने साइंस ले रखा था तो उसकी भी कठिनाइयाँ हो रही थी, पढ़ाई भी करना है, रियाज भी फोकस करना है, तो उसमें दिक्कत हुआ। लेकिन अभी मैं इंटर के बाद अपना पूरा कैरियर ही म्यूज़िक के रूप में देखना चाहता हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन भी म्यूज़िक ऑनर्स से ही करना चाहता हूँ। तो अभी मुझे यदि पढ़ाई भी करना होगा तो मैं म्यूज़िक का ही पढ़ाई आगे जारी रखूँगा, तो मुझे रियाज में भी उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ।
1: आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
0: मैंने 2018-19 में जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसमें हमारे RSS के द्वारा विभाग स्तरीय प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें मैंने शास्त्रीय गायन में सेकेंड किया था, और फिर उसके बाद 2020-21 कला उत्सव में हारमोनियम वादन में जिला स्तर में फर्स्ट और राज्य स्तरीय में सेकेंड किया था, और फिर उसके बाद 21-22 में भी कला उत्सव हुआ था, तो उसमें भी मैंने जिला स्तरीय में फर्स्ट और राज्य स्तरीय में उसमें भी हारमोनियम वादन में सेकेंड किया था। और फिर उसके बाद मुझे किलकारी के द्वारा पता चला कि एक युवा उत्सव भी जारी होता है, वो भी बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लेवल तक होता है, उसमें भी मैंने अपने गुरुजन के आज्ञा से प्रतिभागिता निभाई और युवा उत्सव 2021-22 में जिला स्तर पे हारमोनियम वादन में सेकेंड किया था, और उसमें मैंने लोकगीत की प्रस्तुति भी दी थी। और फिर 2022-23 में जिला स्तरीय युवा उत्सव में हारमोनियम वादन में सेकेंड किया था, और वाद्य वादन में थर्ड, और समूह लोकगीत में फर्स्ट किया था, जिसकी प्रस्तुति राज्य स्तरीय पे फिर हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में दिया था। फिर उसके बाद 2023-24 युवा उत्सव, जो कि अभी फिलहाल ही भागलपुर के टाउन हॉल में हुआ था, उसमें मैंने हारमोनियम वादन में फर्स्ट, तबला वादन में थर्ड और सुगम संगीत में भी थर्ड किया था। और इसके अलावा मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी है 2021 में, और मुझे किलकारी के द्वारा 2022 में किलकारी सारथी का भी अवार्ड मिल चुका है।
2: दोस्तों, विशेष भेंटवार्ता में आप सुन रहे थे अमन कुमार से की गई भेंटवार्ता। आशा करती हूँ कि आपके लिए लाभदायक रहा होगा। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव से अवश्य अवगत करा सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पर phairbhagalpur@gmail.com पर। आप हमें पत्र या मेल भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर द्वारा केंद्र निदेशक युववाणी कार्यक्रम, पिन कोड संख्या है 812001। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे, चटपटी बातें करेंगे। अब हमारी घड़ी भी इशारा कर रही है, हम फिर मिलेंगे, फिल्मी गीत सुनेंगे। तब तक इंतज़ार रहेगा आपका। इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त अर्पिता को। नमस्कार, शुभ संध्या।

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म कसूर से लिया है। अलका याज्ञिक एवं उदित नारायण की युगल आवाजें हैं। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

अलका याज्ञिक एवं साथियों का गाया फिल्म खलनायक का एक गीत सुनते हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले एवं कुमार शानू का गाया फिल्म जान तेरे नाम का गीत। गीतकार सईद राही और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर विशेष भेंटवार्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे मृगेंद्र प्रसाद से की गई विशेष भेंटवार्ता। विषय होगा समेकित कृषि के लाभ। आपसे बातचीत करेंगे कुसुमा कर दुबे। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज गायिका होंगी ज्योति। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीकंधा। रात्रि 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा जो आधारित होगा फिल्मी गजलों पर। और रात 10:30 पर कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय होता है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है वंदना। कल 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर विनय शरण से की गई भेंटवार्ता। विषय होगा पेनक्रियाज की बीमारियां। आपसे बातचीत करेंगे सचिन कुमार। 6:40 पर रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। 7:00 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें 7:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायक कलाकार होंगे राजीव कुमार सिंह। 7:20 पर कथा सागर कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रेमचंद पांडे की लिखी कहानी। शीर्षक होगा नाटक। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे नाटक खुददार। लेखिका होंगी प्रोफेसर मीना रानी एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे अमित कुमार। 11:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं गुलदस्ता। 12:00 महिला श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT का

प्रायोजित कार्यक्रम होता है उमंग। दिन के 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में कल गायक कलाकार होंगे गोपाल भगत। 1:30 बजे आप सुनेंगे धारावाहिक पोषण की नींव पर स्वास्थ्य महल, लेखिका होंगी डॉक्टर आरती स्मित एवं प्रस्तुतकर्ता नौमी शांति हेम्ब्रम। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3 बजे तरंग कार्यक्रम में फनकार होंगी रेशमा। 3:20 पर आप सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में कल गायक कलाकार होंगे अरविंद कुमार यादव। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका होंगी रत्ना। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अली अकबर खां का सितार वादन राग रागेश्वरी में। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सुहाना सफर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अन्नो का नमस्कार
1: और सभी को आरू का भी नमस्कार। अन्नो भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार आरो बहन, तब सुनाइए हाल समाचार, सब ठीक ठाक है ना?
1: सब बढ़िया है अन्नो भाई, लेकिन अभी जो 2-3 दिन से जो तूफान बहुत तेज आ रही है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो जनजीवन है हम लोग का वो अस्त व्यस्त हो गया है।
0: बिल्कुल, और खास तौर पर जो है हमारे किसान भाई जो है वो इनसे ज्यादा ही पीड़ित है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि देखिए आरो बहन, आंधी तूफान और वर्षा जो है वो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं, खासकर जब ये अचानक और तेज रूप से आते हैं तो इससे किसान जो है वो अपनी पूरी फसल जो है वो बोते जो हैं, खास करके सिंचाई करके जो इतनी मेहनत से अपने फसल उपजाते हैं उसको जो है उसमें किसी प्रकार की जो है बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फसल पूर्ण रूप से तैयार होता है और अचानक ओलावृष्टि और या फिर जो है तेज आंधी तूफान के कारण जो है फसल बर्बाद हो जाती है, इस कारण से हमारे किसान भाई को इससे ज़्यादा जो है समस्या का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल अन्नु भाई, और सिर्फ किसान भाइयों को ही नहीं, पूरा सारे जो जनजीवन है वो प्रभावित होता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो तूफान आई रात में, इसके बाद हर जगह पेड़ टूटना, जो बिजली के खंभे थे वो खर गए,
0: बिल्कुल,
1: और पूरा ब्लैकआउट हो गया
0: जी।
1: पूरे दिन और रात में बिजली नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरा जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो गया
0: जी। और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो है आरो बहन, बिजली का होना कितना आवश्यक है यह हम अनुमान से क्या पूरी तरह से यह हम जानते ही हैं, क्योंकि एक एक जो भी जितनी भी तरह की उपकरण इस समय चलती है उसके लिए बिजली की ज्यादा आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल, और गांव हो या शहर हो, कहीं भी पीने का भी पानी बिना बिजली के अब नहीं आ पाता।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: और इस प्रकार की जो तूफान आती है या फिर आंधी जो आती है आरोहण, तो उससे आम जन जीवन के साथ साथ हमारे पशु धन जो होते हैं उन्हें भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। खैर, मानसून चूंकि अब अगले 2 हफ्तों के बाद आने की पूरी संभावना है, और वैसे भी आरो बहन प्रत्येक वर्ष मानसून के पूर्व जो है, प्री मानसून जिसे कहा जाता है, यानी कि मानसून आगमन के पूर्व जो है वो इस प्रकार के आंधी तूफान के साथ वर्षा

0: ही है।
1: बिल्कुल अनु भाई, लेकिन अभी जो 25 से 9 तप्पा शुरू हुआ था
0: जी
1: भागलपुर और आसपास में, तो इसका असर दिख ही नहीं रहा, उल्टे तूफान चल रही है।
0: बिल्कुल
1: तो कहीं ना कहीं ये मौसम है जो

0: से जो है हमारे किसान भाई थोड़ा चिंतित भी जरूर होते हैं। खैर उतनी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सही समय पर मानसून आती है तो फिर देखा जाता है कि लगभग ठीक ठाक वर्षा हो ही जाती है। खैर आरोबहन, हम लोग चूंकि जानते ही हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है ही, और कृषि प्रधान देश के लिए जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार की ओर से चलाई जाती है। और इसमें सर्वप्रमुख जो है हमारे एक योजना जो थी, जिसे कि बहुउद्देशीय योजना भी कहा जाता है, यानी कि बांध जो बनाया जाता था नदियों पर, उसे बहुउद्देशीय योजना कहा जाता था। उसकी नींव हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रखे थे, और आज उनकी पुण्यतिथि है।
1: बिल्कुल अन्नू भाई, प्रत्येक वर्ष 27 मई का दिन जो है वो भारत के इतिहास में एक अत्यंत भावुक और चिंतनशील दिन के रूप में दर्ज है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आज ही के दिन सन 1964 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के शिल्पकार और शांति के मसीहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का अवसान हुआ था। और अन्नू भाई, चाचा नेहरू के नाम से बच्चों के बीच लोकप्रिय और विश्व पटल पर एक महान दूरदर्शी राजनेता के रूप में स्थापित नेहरू जी की पुण्यतिथि केवल एक महान आत्मा को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का भी दिन है।
0: बिल्कुल, और देखिए आरोबहन, नेहरू जी ने जो है वो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी
1: जी।
0: बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, और वहाँ वे कानून की शिक्षा पूरी करके वापस भारत लौटकर वकालत की शुरुआत की। लेकिन वे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े और गांधी जी के विचारों से वे बेहद प्रभावित थे। इस कारण स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई उन्होंने, और कई आंदोलन में वे भाग भी लिए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वे सक्रिय रूप से भूमिका निभाए।
1: बिल्कुल, और आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं में भी अन्नू भाई इनका बहुत योगदान था।
0: बिल्कुल,
1: आज़ादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो अत्यंत दयनीय थी, जो हम सभी जानते हैं
0: जी।
1: और नेहरू जी ने सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरित होकर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की नींव रखी
0: जी,
1: जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। साथ ही उन्होंने योजना आयोग का गठन किया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, सिंचाई और भारी उद्योगों के विकास को गति दी। और जैसे कि अभी आपने कहा था अन्नू भाई
0: जी,
1: कि इन्होंने बहुत सारी परियोजनाएं
0: जी, जिनमें बहुउद्देशीय परियोजना जो है
1: शामिल थी,
0: मुख्य रूप से
1: इसीलिए इन्होंने इन योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में
0: जी,
1: रूप इसको
0: आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में उन्होंने व्याख्या की
1: जी। और नेहरू जी केवल तत्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वे भविष्य के भारत की नींव रख रहे थे, और इसीलिए उन्होंने बड़े बांधों, बिजली परियोजनाओं और इस्पात संयंत्रों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी
0: जी।
1: साथ ही
0: और आरोबहन, इसके साथ साथ वे उद्योग, विज्ञान और तकनीक पर भी जोर दिए थे। अब जैसे अभी देखिए कि आप IIT या फिर एम्स जैसे संस्थानों की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी।
1: बिल्कुल,
0: और चूंकि दुखद बात यह थी कि नेहरू जी का जो निधन वो आज ही के दिन यानी 27 मई को ही हुआ था, वर्ष 1964 में, और उनकी पुण्यतिथि पर ही जो है प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन 27 मई को पुण्यतिथि मनाई जाती है।
1: और अन्नू भाई, बच्चों और शिक्षा के प्रति भी उनका अगाध प्रेम था। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे किसी भी देश का एक वास्तविक भविष्य होते हैं, और उनका कहना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे, हम जिस तरह से उनका पालन पोषण करेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। तो बच्चों के प्रति इन्हीं अनन्य प्रेम के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहते थे
0: जी। और वैसे भी आरोबहन, उन्हें बच्चों से काफी ज्यादा लगाव था
1: जी,
0: इसलिए वे हमेशा बच्चों से घिरे भी रहते थे, और बच्चों के साथ वे अच्छे तरह से जो है एक सामंजस्य भी स्थापित करते थे, और इस कारण से बच्चे भी उन्हें आनंदित होकर चाचा नेहरू कहते।
1: और उनका जो जन्मदिन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का,
0: यानी
1: 14 नवंबर मनाते हैं, उसे हम बाल दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं। साथ ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने और बाल कल्याण के लिए भी अनेक परियोजनाएं शुरू की थी अनुभाय
0: जी।
1: जी
0: बिल्कुल आरोबहन, और आज एक हमारे देश में जो है एक महान समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम पंतुलु जी की भी पुण्यतिथि है।
1: बिल्कुल,
0: और इनकी निधन आज ही के दिन यानी 27 मई को 1919 ईस्वी को हुआ था।
1: बिल्कुल, और

0: इस कारण
1: जी
0: जो है आरोबहन कुंदुकुरी वीरेशलिंगम पंतुलु का जन्म भी जो है वो 16 अप्रैल 1848 ईस्वी को राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था
1: जी।
0: और कुंदुकुरी वीरेशलिंगम आधुनिक आंध्र प्रदेश के महान समाज सुधारक, लेखक, शिक्षाविद और पत्रकार थे।
1: बिल्कुल, और भारतीय इतिहास में 19वीं और 20वीं शताब्दी को पुनर्जागरण और समाज सुधार का स्वर्णकाल माना जाता है। इसी कालखंड में जहाँ राजा राम मोहन राय ने बंगाल में कुरीतियों के खिलाफ शंखनाद किया, वहीं दक्षिण भारत में यही अलग जगाने का श्रेय जो है महापुरुष कुंदुकुरी वीरेशलिंगम पंतुलु को दिया जाता है जी। और इन्हें आधुनिक तेलुगु समाज का जनक और दक्षिण भारत का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ कुंदुकुरी चुकी जो है वो वीरेशलिंगम जी जो है वे समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष वे काफ़ी किए थे और खासकर महिलाओं की शिक्षा तथा विधवा विवाह का वे समर्थन भी किए थे।
1: बिल्कुल,
0: इस कारण से उन्हें जो है राजा राम मोहन राय की मतलब दक्षिण भारत के राजा राम मोहन राय भी उन्हें कहा जाता है।
1: और रानू भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। शिक्षक के रूप में काम करते हुए उन्होंने समाज में व्याप्त, जैसा कि अभी आपने बताया, अंधविश्वासों, बाल विवाह, जातिवाद और महिलाओं की दयनीय स्थिति को बहुत करीब से देखा।
0: बिल्कुल,
1: और इसी अनुभव ने उनके भीतर के समाज सुधारक को जगाया और उन्होंने कलम तथा कर्म को अपना हथियार बनाकर समाज को बदलने का संकल्प लिया
0: जी।
1: और नारी उत्थान के मसीहा वीरेशलिंगम पंतलु का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान महिलाओं के अधिकारों और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने में रहा जी।
0: बिल्कुल,
1: और उस दौर में अन्नू भाई रूढ़िवादी समाज महिलाओं पर तरह तरह का अत्याचार कर रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला और बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें जैसे कि प्रथम विधवा पुनर्विवाह उन्होंने 1881 में उन्होंने करवाया, फिर महिला शिक्षा के प्रणेता भी उनको माना जाता है, साथ ही वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा का भी उन्होंने समाज में विरोध किया और इसका उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। और इसके अलावा अन्नु भाई
0: जी
1: तेलुगु साहित्य के आधुनिक निर्माता भी इनको माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बहुत सारी चीज़ें किए जो दक्षिण भारत के लिए अभी भी कहीं ना कहीं हमारा पूरा देश जो है इनके प्रति नतमस्तक है, इनके समाज सुधारक कार्यों के प्रति जी
0: जी। तो आरोबहन हम लोग और भी विस्तृत रूप से बातचीत जारी रखेंगे, अभी एक कार्यक्रम की शुरुआत प्यारा सा देवी गीत से करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: Akashwani at 90.
1: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जी
1: सभी श्रोता भाइयों को एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और आरोहण महत्वपूर्ण संदेशों के बाद, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे
1: जी,
0: कि आधुनिक जीवन में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है, लोग अपने काम के प्रति तो आगे बढ़ते ही रहते हैं
1: जी,
0: कामों के पीछे वे भागते ही हैं
1: जी,
0: लेकिन इसके साथ साथ हमारे जीवन में जो है वो नींद का भी महत्व काफी ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भागने के चक्कर में लोग सुकून और नींद को भूल ही गए हैं।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: आरोहण नींद जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि शरीर और मस्तिष्क को जो है फिर से ऊर्जा देने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक चीज भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और शरीर की मरम्मत यानी कि नींद के दौरान जो है शरीर की जितनी भी तरह की कोशिकाएं होती हैं वे खुद को ठीक करती है, नींद के कारण ही ऐसा होता है। और इसके साथ साथ मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी

0: है वो नींद के कारण ही बढ़ती है। इससे अगर हम सही नींद यानी 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो अच्छी नींद से याददाश्त, ध्यान और सोचने की क्षमता जो है वो मजबूत भी होती है
1: जी
0: और रोगों से बचाव भी इसके साथ साथ होता है।
1: बिल्कुल
0: पर्याप्त नींद लेने से जो है हमारे शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है
1: जी
0: और साथ ही साथ नींद की कमी से जो मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ जाती है उस वो सब भी जो है अगर हम भरपूर नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की नींद
1: जी
0: तो वो सारा समस्या भी दूर हो जाता है।
1: बिल्कुल अनु भाई, तो क्यों ना इसी पे एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुना जाए।
0: जी
1: तो वार्ता का विषय है जीवन में नींद का महत्व, और वार्ताकार हैं डॉक्टर राजभूषण प्रसाद।
0: बिल्कुल
2: की प्रथम श्वास और मृत्यु पूर्व की अंतिम श्वास के समय काल को हम अपने जीवन का नाम दे सकते हैं, और नींद विश्राम की एक स्वाभाविक स्थिति है। नींद जीवन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारी मूल प्रवृत्ति एवं जन्मगत दैवीय गुण है। सच तो यह है कि जीने के लिए सोना उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन करना तथा पानी पीना। नींद में मनुष्य अपने दैनिक समस्याओं से संबंधित किसी भी विचार अथवा हलचल से शांत होकर विश्राम प्राप्त कर नई ऊर्जा प्राप्त करता है। योग में नींद को प्रत्याहार की एक विशेष अवस्था कहा गया है, जहां हमारा चेतन मन ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय दोनों अंगों से मुक्त होकर अब चेतन मन से संबंध जोड़ते हुए बाहरी संसार की क्रियाओं से अपरिचित हो जाता है। नींद की इस अवस्था में हमारी चेतना अंतर जगत की ओर मुड़ जाती है। नींद और जागने के बीच की अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने निद्रालुता की अवस्था कहा है। यह परिवर्तनशील अवस्था अधिक से अधिक 3 या 5 मिनट तक की रहती है। संपूर्ण एवं गहरी नींद के बाद जगने पर अपने अंदर नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। नींद से हमारी थकावट तो दूर होती ही है, साथ ही नींद के बाद नए नए सार्थक विचार उत्पन्न होते हैं। इससे चिंतन शक्ति में वृद्धि एवं कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ अनुभव करते हुए तरोताजा होते हैं। स्वस्थ एवं संतुलित व्यवहार के लिए हमारे संपूर्ण जीवन में नींद का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। उचित मात्रा की नींद हमें शारीरिक मानसिक शक्ति के साथ सुरक्षा प्रदान करती है। शैशव काल एवं बाल्यकाल की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में नींद एक आवश्यक सहायक तत्व माना गया है। पर्याप्त नींद से शरीर की सभी अंतरस्रंभी ग्रंथियां उत्तेजित एवं सक्रिय हो समुचित मात्रा में अपने हार्मोन्स का स्रवण करने लगते हैं, जिससे शरीर के अंदर चलने वाले चयापचयी मेटाबॉलिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलते हुए हमारे शारीरिक वृद्धि में सहयोग करता है। हमें अच्छी भूख लगती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और हम बाह्य रोगाणुओं से सुरक्षित हो जाते हैं। नींद के समय अवधि पर ध्यान दें तो रात्रि काल की नींद ही सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि इससे प्राकृतिक समय चक्र एवं शारीरिक जैविक घड़ी के बीच सामंजस्यता बनी रहती है। दिन में या सूर्योदय के बाद तक नींद में बने रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए भी स्वास्थ्यकारी नींद अलग अलग हैं। जैसे नवजात बच्चों के लिए 16 से 18 घंटे की नींद, 2 से 5 वर्ष बच्चों के लिए 11 से 12 घंटे की नींद, स्कूली बच्चों के लिए 10 घंटे की नींद, युवा वर्ग के लिए 9 से 10 घंटे एवं वयस्कों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। पर्याप्त समय नींद सामान्य नींद जहां स्वास्थ्यवर्धक है, वहीं अनिद्रा हमारे लिए कई रोग एवं समस्या का कारण बनता है। नींद के समय काल में कभी कमी बने रहने को अनिद्रा कहते हैं। यह हमारे संपूर्ण शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। हम बेचैनी अनुभव करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन से परेशान रहते हैं। अनिद्रा के कुप्रभाव से प्रायः सभी अवगत हैं। चिड़चिड़ापन, आक्रोश एवं घबराहट तथा अवसाद में रहना इसका प्रमुख लक्षण है। याददाश्त में कमी, कार्य के प्रति सजगता में कमी, नए ज्ञान को सीखने में कमी, किसी कार्य में ध्यान केंद्रित न कर पाना अनिद्रा के प्रति फल हैं। अनिद्रा से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय गति का रुकना आदि गंभीर परिणाम देखे गए हैं। एक शराबी ड्राइवर से कहीं अधिक अनिद्रा से ग्रसित ड्राइवर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। आमतौर पर हम नींद के समय अनिद्रा के कुछ समस्याओं से अनभिज्ञ रहते हैं, जैसे नींद में खर्राटा, नींद में आश्वासन, नींद में बोलना आदि। अनिद्रा का कुछ कारण तो अल्पकालीन होता है, जो कुछ दिनों तक पारिवारिक कलह, समस्या, तनाव, सामाजिक दबाव, कार्य तनाव के कारण हो सकता है, जिसका निवारण अपने पर नियंत्रण, जीवन शैली में बदलाव तथा सोने की यौगिक विधियों से हो जाती है। परंतु कुछ कारण दीर्घकालीन रहता है, जिसका प्रभाव काफ़ी समय तक बना रहता है और इससे हम प्रायः अनजान बने रहते हैं। इसका समुचित उपचार योग्य चिकित्सक एवं यौगिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हो पाता है। नींद में खर्राटा एवं नींद में आश्वासन हमारे अस्थायी अनिद्रा का मुख्य कारक है। नींद में खर्राटा एवं नींद आश्वासन, जिसे स्लीप एपनिया भी कहते हैं, को इस प्रकार समझ सकते हैं। सामान्य श्वसन के अंतः श्वसन में हम नाक से वायु ग्रहण करते हैं तथा वायु श्वसन में दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन के इस कार्य में श्वसन पथ अंतर्गत नाक, मुंह, गला के अंदर की वायुनली तथा फेफड़े का उपयोग होता है। नींद की हालत में गले की वायुनली के अपने गोलाई में खुले रहने की अवस्था में श्वास लेने या छोड़ते समय खर्राटे की आवाज़ नहीं आती, परंतु इसी वायुनली में जब सिकुड़न के फलस्वरूप इसकी गोलाई आधी दब जाती है या पूर्ण रूप से दबकर वायुनली का मार्ग बंद हो जाती है, तो खर्राटा या आश्वासन नींद की अवस्था बनने लगती है। गले के श्वास नली की गोलाई मार्ग जब सिकुड़ कर आधी दब जाती है, तो अंदर आती और बाहर निकलती वायु को आने जाने में रुकावट मिलती है, जिससे एक खर्राटे की ध्वनि के रूप में वायु घर्षण के साथ वायु नली से बाहर हो नाक से निकलती है। खर्राटे की यह ध्वनि कभी मंद होती है तो कभी तीव्र, परंतु जब यही श्वास नली गले में पूरी तरह सिकुड़ कर बंद हो जाती है, तो आश्वासन नींद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ना तो शुद्ध वायु को फेफड़े में आने का मार्ग मिल पाता है और न तो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वायु ही फेफड़े से बाहर निकल पाती है। ऐसी हालत में एक तरफ शरीर में विषैले टॉक्सिक का जमाव होने लगता है, तो दूसरी ओर मस्तिष्क के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आश्वासन नींद के इस संकट से उबरने के लिए ब्रेन को नींद तोड़ देने का स्वतः संदेश प्राप्त होता है, जिससे मुख से विशेष ह की ध्वनि निकलते हुए मुख खुलता है और अपने आप बंद हुई गले की श्वास नली खुल जाती है और सामान्य श्वसन प्रारंभ हो खर्राटे से प्रवेश करते हुए पुनः स्लीप एपनिया की स्थिति आ जाती है, जिससे बार बार नींद टूटती रहती है। प्रायः एक घंटे की नींद में 1 से 100 तक की स्लीप एपनिया की स्थिति बन सकती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कतई ठीक नहीं है। रात्रिकाल में नींद से उठकर बाथरूम जाने की इच्छा होने पर हृदय रोगी, डायबिटीज एवं सामान्य वयस्कों को 1.5 मिनट के समय की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जैसे आधा मिनट जगकर बिछावन पर लेटे रहना, आधा मिनट उठकर बिस्तर पर ही बैठना और अंतिम आधा मिनट बिस्तर से पांव लटकाकर रहने के बाद ही बाथरूम जाने के लिए पांव बढ़ाना चाहिए। झटके से उठकर बाथरूम जाने पर मस्तिष्क में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी रहने एवं ईसीजी में अचानक आई बदलाव से हृदय गति रुकने की संभावना बढ़ जाती है, जो आम तौर पर बाथरूम के अंदर हृदय गति रुकने की मौतों में दर्ज होती आई है। अतः नींद से उठने का भी एक अनुशासन तो बनता ही है। सारांश में हम अपने नींद के प्रकारों को विभिन्न नामों में बांट सकते हैं, जैसे गहरी नींद, स्वप्नबाधित नींद, अल्पकालीन नींद, खर्राटेदार नींद, तंद्रा नींद, अनिद्रा वाली नींद आदि आदि। एक स्वस्थ एवं संपूर्ण नींद के लिए

यौगिक पद्धति तथा योग निद्रा काफ़ी सहायक होती है। अतः आम सभी लोगों को योग का अभ्यास कुशल योग शिक्षक से प्राप्त कर लेना चाहिए।

आम सभी लोगों को योग का अभ्यास कुशल योग शिक्षक से प्राप्त कर लेना चाहिए प्राप्त कर लेना चाहिए।

0: पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं इस कार्यक्रम के 5558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम हाँ जोड़ते हैं।
1: डॉक्टर साहब,
0: क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में, बताइए।
2: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
0: हाँ।
2: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
0: है। जानकारियों का अभाव है, हाँ।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी
2: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
2: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
0: जी।
2: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
0: जी,
2: है
0: जी।
2: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
0: जी एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
2: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा

0: अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल, ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में। अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है, कोई भी विषय हो जाए। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी।
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है।

0: श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
1: 2023 से
0: पढ़ाई लिखाई के बारे
1: जी,
0: में
1: जी जी
0: पढ़ाई लिखाई के बारे में
1: बिल्कुल। मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय
1: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा कहीं भी। नौकरियां सभी जगह है,
0: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
0: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन
1: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी हाँ जो है ना उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155588889155588888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अनु भाई, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और क्यों ना कुछ संदेशों को सुन लें।
4: बिल्कुल
3: जी, सुनते हैं कुछ संदेशों को।
5: It's raining offers on the new age Baleno this season.
4: Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC applies.

0: AIR at 90.
1: जी, सभी श्रोता भाइयों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। अनु भाई, क्यों ना अब कुछ मौसम संबंधी सूचनाएं हमारे श्रोताओं को दे दी जाए।
2: बिल्कुल।
1: तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि यानी कि 27 से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, जो कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की एवं हल्की से मध्यम स्तर वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा जिलों में कल लू यानी कि हीटवेव चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।
2: जी।
1: सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। अनु भाई, कुछ समसामयिक सुझाव भी है, जैसे कि सामान्य सलाह यह है कि आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खरीफ फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। गर्मा मूंग एवं उड़द के लिए समसामयिक सुझाव यह है कि देर से बोई गई मूंग एवं उड़द फसलों में हेयरी कैटरपिलर के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। प्रकोप दिखाई देने पर मिथाइल पैराथियन 50 ईसी 2.0 मिलीलीटर पानी का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। सब्जियों के लिए समसामयिक सुझाव यह है कि भिंडी में माइट एवं फल एवं तना छेदक तथा कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप दिखाई देने पर एथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर पानी का छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन हेतु मेलाथियन 50 mg 1 मिलीलीटर या डाइमेथोएट 30 ईसी 1.5 मिलीलीटर पानी का छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण हेतु डाइमेथियन 30 ईसी 2 मिलीलीटर 10 ग्राम चीनी प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।
2: बिल्कुल।
1: बागवानी के लिए सुझाव यह है कि आम के बगानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी या लैम्डा साइलेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। बागानों में पर्याप्त एवं निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुराई फलों की परिपक्वता के आधार पर करने की सलाह दी जाती है। शाही किस्म में तुराई निकट होने के कारण किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन हेतु लैम्डोस साइलोथ्रियोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। पशुपालन के लिए भी कुछ सुझाव है।

0: जी, पशुपालन भाई के लिए भी हम लोग सुझाव देंगे, लेकिन हमारे किसान भाई फसलों के साथ साथ किस प्रकार से कुछ जड़ी बूटी यानी कि अश्वगंधा, कालमेघ और शतावर की खेती किस प्रकार से वो अपने खेतों में कर सकते हैं,
1: जी
0: इसके लिए हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं डॉक्टर रणधीर कुमार जी से।
1: बिल्कुल
2: मानक गुणवत्ता युक्त उत्पादों के लिए कच्चे ताजे व सही माल की सतत उपलब्धता उन्नत प्रजातियों को उगाकर की जा सकती है। इसकी खेती द्वारा बंजर एवं अनुपयुक्त भूमि का उपयोग होता है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु वैकल्पिक निरंतर आय का स्रोत प्रदान करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औषधीय एवं सुगंध पौधों की वैज्ञानिक खेती, औषधीय उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री निर्माण उद्योग तथा अन्य उद्योगों में इसकी बढ़ती हुई मांग, जबकि जंगलों द्वारा की जाने वाली आपूर्ति क्रमशः घट रही है, के चलते लाभ अर्जन का जरिया बन सकती है। व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्रजातियों की कृषि प्रणाली विकसित हो चुकी है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से किए जा रहे सतत शोध के द्वारा नई प्रजातियों के उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि को सुलभ बनाया जा सकता है। इस प्रकार बिहार में सफलतापूर्वक उगाए जाने वाले औषधि एवं सुगंध पौधों के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ। असिंचित, कम उपजाऊ, क्षारीय या अम्लीय मृदाओं में उपयुक्त औषधि एवं सुगंध पौधे जैसे अश्वगंधा, सदाबहार, सतावर, सर्पगंधा, कालीहारी, कवाँच, भुई आंवला, कालमेघ, इसबगोल, गुड़मार, ग्लोई, पुनर्नवा आदि औषधीय पौधे तथा सुगंध पौधे जैसे पामारोजा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, खस, मसकदाना, तुलसी आदि की खेती हम कर सकते हैं। कृषि और दानिकी में उपयुक्त औषधीय एवं सुगंध पौधे जैसे सर्पगंधा, कालमेघ, पिपली, पन प्याज, कवाँच, गिलोई, रत्ती जिसे गुंजा भी कहते हैं, काली मुसली, सफ़ेद मुसली, वच, कलिहारी और सुगंध पौधों में पचौली की खेती हम कृषि उद्यानिकी के साथ कर सकते हैं। बिहार की फसल प्रणाली में उपयुक्त औषधि एवं सुगंध पौधे में जो हम खेती जरिया के बारे में संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं, जैसे सर्पगंधा जिसे रावोल्फिया सर्पेंटाइना भी कहते हैं, इसका जड़ का उपयोग, बहुत सारे उपयोग होते हैं इसमें, इसके जड़ में रिजरपाइन, अजमलिन, अजमलेसिन, सर्पेंटिन ये सब अल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसका उपयोग बहुत हाइपरटेंशन आदि बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है। और आप जानें कि ये फसल जो होता है 18 से 20 महीने का होता है और बहुवर्षीय फसल है, और इनकी रोपाई जो है जून से दिसंबर तक में की जाती है। बीज से इसका बिचड़ा तैयार करके इसकी हम रोपाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बिजाई भी कर करके हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। औसत उत्पादन इसमें 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और यह जो है प्रति वर्ष आपका 20 से 30 कुंटल जड़ इसमें उपलब्ध हो जाता है पहले साल में, और इस तरह से इसका 5 साल 7 साल तक हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। अश्वगंधा जिसे वैज्ञानिक नाम बिथेनिया सोमनीफेरा होता है, इसका भी जड़ का ही इस्तेमाल होता है और इसमें बिथेनिन नामक अल्कलॉइड होता है जो बहुत सारे बीमारियों को शुद्ध ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। यह फसल 5 से 6 महीने का है और ये अगस्त से फरवरी के बीच में इसे हम बुआई करके बिचड़ा तैयार करते हैं और इसी बीच रुपाई कर सकते हैं, और इसमें जो जड़ का उत्पादन क्षमता है ये 5 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, और प्रति हेक्टेयर इसमें हम 30 से 40 हज़ार रुपया इसमें इनकम प्राप्त कर सकते हैं। कालमेघ ये जिसे एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा जिसको बिहार में हम जिसका हम अगस्त से फरवरी तक बिजाई और रोपाई करते हैं, और इसमें औसत उत्पादन 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जिससे कि प्रति हेक्टेयर में 70 से 75 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें मुनाफा हो सकता है।
0: जी श्रोताओं, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, कल फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। अभी विदा दें, सबको अन्नों का नमस्कार
1: और सभी को आरू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पंचायतों को सशक्त बनाने पर भी दिया जोर। झारखंड मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े 39 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस को जारी रखने की दी मंजूरी। 25,530 करोड़ रुपए का किया आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता होने की दी जानकारी। घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करने की दी सलाह। और राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और पंचायतों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों और सखी मंडलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने SHG महिलाओं को बाजार, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज उपलब्ध कराने तथा पलाश मार्ट जैसे बिक्री केंद्रों के विस्तार की कार्य योजना का भी निर्देश दिया। बैठक में मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, लिफ्ट इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और ग्रामीण आजीविका से जुड़े विभिन्न योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभागों के 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक की विस्तृत जानकारी दी।
1: आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से व्यापक औषधि और मानव प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, NDPS एक्ट 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा है कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मधुबन में गिरिडीह ग्रामीण और कोडरमा जिले के कार्यकर्ता

0: भारत में कई बार हो चुका है। अभी जो हो रहा है तो इसलिए लोगों को कष्ट हो रहा है क्योंकि बीजेपी के राज में हो रहा है, मोदी जी के राज में। अभी जो एसआईआर हो रहा है कि भाई देश के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई वही मतदाता सूची में उन्हीं का नाम रहेगा जो इस देश के लोग, कोई अगर बाहरी लोगों ने घुसपैठ आकर किया घुसपैठ और इलीगल तरीके से उन्होंने वोटर लिस्ट में अपने नाम चढ़ाया है तो उसको हटाया जाएगा।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर से 1 डॉक्टर और पुणे से 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 49 स्थानों पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने झारखंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता होने की जानकारी दी है। कंपनियों ने कहा कि राज्य के सभी पेट्रोल पंपों, डिपो, बॉटलिंग प्लांट और LPG वितरक केंद्रों पर ईंधन आपूर्ति सामान्य और निर्बाध रूप से जारी है। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करें। गुमला जिला के कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जिले के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं।
3: धरती आबा जनजातीय योजना अभियान के तहत हमारे जिले में 5 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों में 6 SER मतलब 6 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और दोनों विद्यालयों में 50 बेड का छात्रावास निर्माण का योजना स्वीकृत है। उसके अतिरिक्त ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर गुमला का जो नया समाहरणालय है वहाँ पर ढलाई तक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
1: खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में आयोजित छऊ नृत्य मेला के दौरान हुई डबल मर्डर मामले का पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से पुलिस ने सबूत जुटाते हुए आरोपियों को साइको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
4: लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया और लगातार हम लोग टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। उसमें हम लोगों को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा कि एक व्यक्ति जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और 2 लोग और थे जिनका कि रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अब हम लोग उनको न्यायिक अवरक्षा में भेज रहे हैं।
1: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने 2 जून तक राज्य में मौसम के अस्थिर बने रहने और कई जिलों में गर्जन, वज्रपात तथा तेज हवा चलने की आशंका

0: जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पंचायतों को सशक्त बनाने पर दिया जोर। झारखंड मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े 39 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस को जारी रखने की दी मंजूरी। 25,530 करोड़ रुपए का किया आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता होने की दी जानकारी। ईंधन के अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करने की दी सलाह। और राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हो चुके हैं। विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं मृगेंद्र प्रसाद सिंह से की गई भेंट वार्ता। विषय है समेकित कृषि के लाभ। आपसे बातचीत कर रहे हैं कुसुमाकर दुबे। यह एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता है।
2: नमस्कार। विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मृगेंद्र प्रसाद सिंह। आप एक सफल किसान हैं। आपने सघन बागवानी में और समेकित कृषि में अपना एक मुकाम बनाया है, एक पहचान बनाई है और आप किसान श्री भी हैं। 2007 में आपको ये पुरस्कार बिहार सरकार से मिला था। ये एक बड़ा सम्मान है और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मृगेंद्र जी।
3: जी।
2: और अपने श्रोताओं के लिए आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं समेकित कृषि के लाभ इस विषय पर। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। जानते तो हैं ही कि आप बागवानी में भी बहुत नाम कमाए हुए हैं, लेकिन पहले बात कृषि करते हैं कि हमारे श्रोताओं को, ऐसे श्रोता जो किसान नहीं भी हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो किसान हैं उनकी विशेष जानकारी के लिए बताइए समेकित कृषि है क्या।
3: जी, आज हम देख रहे हैं अक्सर जमीन बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे टुकड़े में होते जा रहा है। लोगों को अब जमीन का जो क्षेत्रफल है वो घटते जा रहा है।
2: जी जी।
3: तो इस घटते क्रम में
2: जी
3: समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें कि आप एक इकाई क्षेत्र में कृषि के कई विधाओं को ऐसा सामंजस्य कीजिए कि एक का इनपुट दूसरे में चला जाए और उसका जो मेन उत्पादन है वह आपको लाभ मिल जाए।
2: अच्छा,
3: मतलब जैसे
2: जी, जी
3: जैसे कि गाय है तो गाय को पाले हम सर
2: जी।
3: तो गाय को पाल के उससे दूध ले लिए, अब उसका अवशेष है गोबर, उसको हम इनपुट कहेंगे।
2: अच्छा।
3: उस गोबर को हम दे दिए बायोगैस में।
2: ठीक।
3: बायोगैस में अभी दीन बंधु बायोगैस प्लांट चला हुआ है सबसे नया
2: जी।
3: तो बायोगैस में अगर आप दे दिए तो घरेलू ऊर्जा के लिए उपला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, धुआं लगता है, आँख खराब होता है, हमारी पत्नी का आँख खराब होता है, बर्तन मंजना पड़ता है कालिक से
2: जी।
3: लेकिन गैस जब जलाइएगा तो एक तो सबसे पहले घरेलू ऊर्जा मिल गया
2: जी।
3: और वह आपके गाय के गोबर से मिल गया जिसको आप उपला बना के जलाते हैं। अब हुआ बायोगैस से भी जो सैलरी निकला उस सैलरी को बर्मी कंपोस्ट में डाल दिए उसी जगह तो बर्मी कंपोस्ट मिल गया। तो रासायनिक खाद से कई एक गुना आपके जमीन को जो है सो बर्बाद होते जा रहा है।
2: हाँ,
3: दिन प्रतिदिन।
2: हाँ,
3: हाँ, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, जल वायुमंडल। और यह अगर बर्मी कंपोस्ट आप बना के खेत में डालते हैं तो आपके जमीन का मिट्टी का भी सेहत बदल गया। यानी कि इसी तरह से ऐसा ऐसा उसमें आप कंपोनेंट यानी विधा स्थापित एक इकाई क्षेत्र में कीजिए जो एक का इनपुट दूसरे में जाए।
2: अच्छा,
3: यही है कंसेप्ट और इससे फायदा क्या है, एक छोटे से इकाई में अगर दो चार पांच विधा सात विधा आप दे दिए तो मजे में लाख दो लाख रुपया मात्र आधा एकड़ एक एकड़ के जमीन भूभाग में अच्छा। आप लाभ कमा सकते हैं। एक तो फायदा यह है लाभ की, दूसरी फायदा है कि आप कई विधा को आप अपनाए एक ही इकाई क्षेत्र में, आपका रोजगार भी मिला और आप कई बातों से स्वावलंब भी हुए, खाद के मने में बाजार पर निर्भर नहीं हुए।
2: जी जी जी।
3: हाँ, और एक छोटा सा पोखर बना लिए उसी जगह।
2: अच्छा।
3: मछली भी पाल लिए।
2: अच्छा।
3: और मुर्गा फार्म भी खोल दिए, तो मुर्गा फार्म का जो बीट हुआ वो मछली खाएगा। हाँ, तो इसी तरह का कंसेप्ट है समेकितिक कृषि प्रणाली का कि एक इकाई क्षेत्र में कई विधाओं को आप छोटे से क्षेत्र में स्थापित करके और आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। आपका एटीएम भी वो कहलाएगा, कहे कि जब मन हुआ बकरी उसमें 10-20 का तादाद में पाल दिए। मांस के लिए सबसे वैरायटी जैसे है कि ब्लैक बंगाल है, तब मान लीजिए 20 गो बकरी आप अगर उसमें
2: जी जी
3: पाल लिए तो 20 बकरी से कम 40 गो बच्चा होगा।
2: अच्छा।
3: और 6 महीने के बाद अगर 5-6 हज़ार में ही एक बच्चा बिके तो 40-25, 2 लाख-2.5 लाख
2: जी,
3: ये आपको लाभ होगा। तो ये एक इकाई क्षेत्र में ऐसे ऐसे मुर्गी हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, बर्मी कंपोस्ट हुआ, बायोगैस हुआ, मछली हुआ, तो ये अगर बना लेते हैं तो ये मुश्किल से 5 कट्ठा यानी 15-16 डिसमिल में आपका स्थापित हो जाएगा और यह 2-4 लाख रुपये का आमदनी का घर हो जाएगा। यही है समेकितिक कृषि प्रणाली।
2: तो
3: अगर बड़ा है, एक एकड़ है, दो एकड़ है, तो फिर उसमें कुछ आम लगा दीजिए सघन बागवानी में, कुछ अमरूद लगा दीजिए, कुछ अभी टिश्यू कल्चर का केला G9 है, G9 केला लगा दीजिए, एक नंबर का केला होता है, माना करीब करीब 5-4 फीट का वो घौध होता है और उसमें G9 में टिश्यू कल्चर वाला में लाभ है कि ऊपर से नीचे तक का जो छिमड़ी है वह एक समान होगा, खाने में मीठा स्वादिष्ट, तक

0: करते हुए नौकरी छोड़ दिए, इंटरव्यू
1: हाँ
0: में, बरौनी में, फर्टिलाइजर में, इसी में, रिफाइनरी में
1: जी
0: हम इंटरव्यू गेन कर गए थे,
1: जी
0: जॉब करते, लेकिन उसको छोड़ दिए और खेती में तभी से आ गए। अब आज तो
1: तो करीब
0: हिंदुस्तान के जितने भी रिसर्च सेंटर या खेती के सेंटर हैं, करीब करीब सब घूम के हर जगह से प्रशिक्षण सम्मान पाए हैं और आज अपने मजे में खेती कर रहे हैं। सर, एक उदाहरण सा बन गए हैं, एक छोटा सा किसान है लेकिन स्वावलंब से जीवन सीना तान के करते हैं, लोगों को
1: तो
0: बताते
1: आपके
0: हैं।
1: बाल बच्चे कितने हैं?
0: बाल बच्चे दो लड़के हैं, चार बच्ची थी, दो लड़के का भी शादीशुदा बच्चा बुतरू अब हो गया है
1: जी जी
0: और चार बच्चियों का भी शादी कर चुके हैं, मकान
1: जी
0: घर बना लिए हैं।
1: तो आपकी उम्र लगभग 60 साल हो गई होगी
0: नहीं,
1: अब?
0: 60 से ऊपर है, 65-66 बरस हो रहा है।
1: 66। तो आप
0: जी
1: एकदम स्वस्थ हैं और हट्टे कट्टे हैं।
0: जी हाँ, इसका भी
1: जी
0: राज है सर, अनाज कम खाते हैं
1: अच्छा।
0: और तेल मसाला पर ध्यान कम देते हैं और ज़्यादा फल का
1: और
0: सेवन,
1: चूंकि
0: दूध
1: अपना उगाते हैं तो रासायनिक खाद डालते नहीं होंगे, सब वर्मी
0: एकदम नहीं,
1: कंपोस्ट।
0: जैविक खेती। अब तो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, खेत में डालते हैं, रासायनिक खाद का हम एक कणवा भी व्यवहार नहीं करते हैं सर खेत में,
1: जी, और कीटनाशक का करते हैं कि नहीं?
0: कीटनाशक का भी नहीं करते हैं, गौमूत्र से। और
1: जी
0: बहुत से ऐसे है, पंचपर्णी है, 10 पर्णी है, जो हम खुद अपने से बना लेते हैं, उसी का हम फसल पर स्प्रे करते हैं।
1: ओ, तो ये पंचपर्णी वगैरह से या गोमूत्र से क्या कीट मर जाता है, सब नाश हो
0: एकदम
1: जाता है?
0: एकदम मर जाता है। उसके बाद फिर एक ट्राइकोडर्मा बना है बैक्टीरिया से ही,
1: जी
0: उसका
1: जी
0: व्यवहार करते हैं फफूंदनाशी रोग से बचने के लिए,
1: अच्छा। तो पूरी तरह से जैविक कृषि,
0: जो पूरे तरह
1: तो
0: से जैविक कृषि।
1: कुछ ये भी कर लेते होंगे, सब्जी उगा लेते होंगे,
0: सब्जी भी उगाते हैं सर,
1: तो वही जैविक वाली सब्जी आप
0: जैविक
1: खाते
0: वाली
1: भी
0: सब्जी
1: होंगे।
0: है, जैविक आम भी जैविक है, उसमें भी रासायनिक खाद का हम कहीं व्यवहार आज तक नहीं किए हैं, जब से लगाए हैं तब से।
1: जी, तब तो आप खुद भी स्वस्थ रह रहे हैं और दूसरों को स्वस्थ रखना
0: जी
1: चाहते
0: हाँ,
1: हैं।
0: हम यही, हमारी इच्छा ही यही है कि देश स्वस्थ हो, हम स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, पर्यावरण स्वस्थ रहे।
1: आम के साथ क्या होता है ना कि आम, जैसे आपकी बागवानी भी है और आम बाहर भेजते हैं आप, बाजार में बेचते हैं, तो कार्बाइड डाल डाल के लोग पकाते हैं उसको और उससे सेहत पर असर पड़ता है पूरा।
0: जी
1: इस बारे में आप किसानों को प्रेरणा नहीं देते हैं या उन लोगों को जो आपके बाग के आम ले जा रहे हैं कि भैया कार्बाइड मत डालो?
0: कार्बाइड असल है कि लाभ लेने के फेर में सर,
1: जी
0: बिजनेसमैन जो व्यापारी करते हैं वो इथरेल और ये कार्बेट ये सब का व्यवहार करके, अब
1: जी
0: इथरेल डाल देता है, रंग थोड़ा पीला हो गया, देखने में
1: अच्छा
0: लावण्य लगा, उसको
1: जी
0: पैसा अधिक मिला। तो ये सब जो है सो ये किसान तो नहीं रोक सकता है, ये व्यापारी रोक सकता है, और
1: अच्छा
0: व्यापारी जो है सो रोकेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा।
1: हाँ। तो अगर आम में मान लीजिए कार्बाइड नहीं डाला जाए तो भी पक जाएगा
0: तो भी पक
1: वो?
0: जाए, मैच्योर्ड आम अगर तोड़ा जाएगा तो स्वतः पकता है, गाछ से भी
1: जी
0: गिर जाता है,
1: जी
0: मैच्योर्ड आम तोड़ने के बाद तो 2 दिन से 3 दिन में घर में रख देने के बाद भी वो पक जाएगा सर, और
1: जी
0: उसका
1: जी
0: स्वाद भी बढ़िया होगा, पेट में गैस नहीं बनाएगा।
1: अच्छा, आप खेती भी करते हैं और
0: जी
1: इस समेकित कृषि के मतलब अंतर्गत
0: जी
1: आपके खेत पे कुछ कुछ फसल भी बहुत लगाते होंगे
0: जी
1: आप?
0: हाँ, गेहूँ लगाते हैं, धान लगाते हैं, मसूर लगाते हैं, चना लगाते हैं, मूंग है अभी खेत में,
1: जी
0: और पहले ऊख भी लगाते थे लेकिन मिल के कारण ऊख को
1: जी
0: हटा दिए।
1: तो ये जो खेती करते हैं तो उसमें भी जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं?
0: जैविक खाद हर एक जगह सर, हमको अपना बर्मी कंपोस्ट है, हम अपना व्यवहार करके बर्मी कंपोस्ट से 25-50 हज़ार रुपया साल में यर्न भी कर लेते हैं।
1: जी, तो आप दूसरे किसानों को ट्रेनिंग भी देते होंगे?
0: जी हाँ, समूचे जिला में सर मास्टर ट्रेनर के रूप में एग्रीकल्चर विभाग से, आत्मा के विभाग, आत्मा भागलपुर
1: जी
0: की ओर
1: जी
0: से, या आपके कृषि विज्ञान केंद्र
1: विश्व
0: हैं वहाँ हम साधन सेवी के रूप मास्टर ट्रेनर के रूप में पाठशाला में जाते हैं, और एक आपके सेंट्रल के हैं ये दृष्टि विभाग है,
1: जी
0: उन
1: जी
0: उनके उस विभाग से पर साल हम यहाँ भी ट्रेनिंग दिए, और तमिलनाडु और उड़ीसा में जाके भी एक एक महीना जाके ट्रेनिंग दिए, जो उन लोगों का
1: अच्छा।
0: पाठशाला चल रहा था।
1: तो तमिलनाडु और उड़ीसा किसानों को जब आप सिखाते हैं तो वहाँ तो भाषा की समस्या आती
0: वहाँ
1: होगी?
0: दुभाषिया था सर, और
1: हाँ
0: वो हम जो बोलते थे वो किसानों को समझाते देते, लेकिन प्रैक्टिकल तो जो हम करते थे वो समझता था, और सब बहुत बढ़िया खुश, बहुत बढ़िया से वो लोग समझते थे और बड़ा आदर सत्कार किए कि नहीं, हमारा ट्रेनिंग बहुत सफल रहा।
1: अच्छा, इस क्षेत्र में अब

0: ने भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में और तमिलनाडु के क्षेत्र में तो आबोहवा में बहुत अंतर है,
1: बहुत अंतर है सर।
0: तो फसल के तरीका में भी अंतर होगा और उसको लगाने और काटने
1: जी
0: के
1: हाँ,
0: तरीका
1: तरीका
0: में।
1: यहाँ के वहाँ के तरीका में कुछ फसल लगाने में जैसे धान वगैरह है, आम वगैरह है, अंतर है, अंतर है, और वो तरीका यहाँ भी अपनाने से फायदा होगा।
0: होगा।
1: जी हाँ,
0: अच्छा
1: वो तरीका सफल तरीका है जिसको मैंने जाके वहाँ देखा।
0: जी, तो आप देश के बहुत सारे अंचल में गए, एक बात बताइए कि भागलपुर का आम विशेष करके जरदालू दूसरी जगहों पर बिकता है कि नहीं?
1: जी हाँ, इसका डिमांड तो हर जगह हो गया कि यहाँ की मिट्टी का एक यह असर है कि जो जरदालू में फ्लेवर और स्वाद रस आपके खास करके भागलपुर जिला के में भी सुल्तानगंज, शाहकुंड और नाथनगर का जो जरदालू आम है, यह एक और अपना अलग रुतबा रखता है, अलग स्वाद रखता है, अलग पहचान रखता है।
0: तो ये अभी बहुत पैदा हो गया है इस साल, आम की
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: फसल
1: जी
0: आ गई
1: जी
0: है। आम की पैकेजिंग या फिर उसको देर तक सुरक्षित रखने के तरीके का यहाँ कितना, मतलब संभावना कितनी है,
1: जी
0: क्या
1: हाँ,
0: वो सब
1: उसकी
0: होता है?
1: संभावना के लिए सर यहाँ के हमारे भिसी साहब जो मेवालाल चौधरी हैं,
0: जी
1: वो एक आम फेडरेशन का
0: जी जी
1: बनवाए हैं
0: बनवाया।
1: जिसके मेंबर हम भी हैं।
0: जी
1: अशोक चौधरी आपके तिलकपुर के
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: अध्यक्ष हैं,
0: जी
1: और उनके थ्रू यहाँ जो है सो अब ये सब कारोबार आम के लिए के विषय में यहाँ से विदेशों तक कैसे आम हमारा जाए, हमारा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद कैसे लोग जाने दुनिया भर में, इसके
0: जी
1: लिए प्रयासरत हम लोग हैं।
0: तो चलिए, आगे आप सफल हो, आप आए यहाँ और आपने श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समेकित कृषि के लाभ। मृगेंद्र प्रसाद सिंह से की गई ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता आप सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रहे थे कुसुमाकर दुबे। विशेष भेंट वार्ता का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इधर आइए, इधर।
7: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
8: शुभ वाणी,
7: लाभवाणी,
8: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को यह

0: स्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को वैध करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक अनिवार्यताओं की प्रक्रिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा SIR पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। श्री कुमार पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
3: चाहे बिहार में SIR हो या पश्चिम बंगाल, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है, माफी मांगिए इस देश की जनता से।
1: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में शुरू किए गए SIR के निर्णय को बरकरार रखने के फैसले को सही ठहराया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने SIR को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया था।
4: SIR अधिकार है चुनाव आयोग का। ये लोग क्या चाहते थे, डबल डिजिट रहे, मृतक का नाम रहे, रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम रहे, घुसपैठिए का नाम रहे, परमानेंट शिफ्टेड का नाम रहे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था बिहार में, और राहुल गांधी और विपक्ष से सुपरास साफ कर दिया जनता ने। और अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि चुनाव आयोग का अधिकार है SIR, अब वो कर रही है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क परियोजनाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और न्यायिक ढांचे से जुड़े कुल 27 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने लोकहित की परियोजनाओं के लिए नई भूमि नीति के तहत बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर अब लोकहित परियोजनाओं के लिए रैयती भूमि आपसी सहमति से खरीदी जाएगी।
5: बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत रैयत से सीधे भी भूमि खरीदी जा सकती है एक्विजिशन प्रक्रिया में गए बगैर, और इसमें जो सामान्यतः प्राप्त होता है उसे 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। ये अपेक्षा है कि इससे भूमि विभिन्न उद्योगों तथा विकास कार्यों के लिए प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
1: बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए राज्यकर्मियों, पेंशनधारियों और जनप्रतिनिधियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही PMCH के हड्डी रोग विभाग में 39 नए पदों के साथ एक स्वतंत्र स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट स्थापित की जाएगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए श्रम संसाधन विभाग का नाम अब युवा रोजगार कौशल विभाग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज पटना में

0: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम्स के तहत छात्रवृत्ति लाभुकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 1,04,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिला है। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से इस वर्ष 1,41,000 अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभान्वित हुए हैं।
1: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग चाहे वो एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया गया। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20,00,000 छात्रों को दिया जा रहा है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्र छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाए।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज, ई मापी और अभियान बसेरा के लंबित मामलों का तेजी से निपटारे का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी। श्री जायसवाल ने किसान पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद कल मनाया जाएगा। बकरीद के त्यौहार को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। DGP विनय कुमार ने कहा है कि दंगा नियंत्रण वाहन संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती करेंगे। STF के पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने कहा है कि कल सुबह 4 बजे से पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने आज जिले के ललित ग्राम में रेलवे वाशिंग पिट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वाशिंग पिट के निर्माण से सुपौल सहित कोसी क्षेत्र में रेल सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में भिंडी तोड़ने के विवाद में महिला की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवरिया पंचायत के मढ़िया गांव में जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। इस घटना में एक SI समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित एक 2 मंजिला मकान से युवक ने छलांग लगा दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है। राज्य का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए राज्य सरकार की ओर से जागरूकता अभियान के साथ विभिन्न जगहों पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार

0: की ओर से विभिन्न जिलों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बिना काम दोपहर बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि गर्मी में बच्चों पर विशेष ध्यान दें। गर्मी को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षा के संचालन पर रोक लगा दी है, जबकि वर्ग 9 से 10 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 11 बजे तक ही किया जा रहा है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
1: प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण बिहार का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आज कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआ बाग स्थित नया टोला में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपौल जिले के बीरपुर स्थित हृदय नगर में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण विभिन्न जिलों में पेड़ और बिजली के पोल गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर तेज आंधी तूफान से आकाशवाणी भागलपुर का मीडियम वेव टावर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, इससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 19,838 सिपाही पदों के लिए हुई परीक्षा में 12,509 पुरुष, 7,312 महिलाएं और 17 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 7 से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अक्टूबर दिसंबर 2025 की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में बांका जिले ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं जिले ने आधारभूत संरचना सेक्टर में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। जिले की यह सफलता स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी सुविधाओं में किए गए सतत प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने इसका श्रेय सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मियों, आकांक्षी प्रखंड फेलो और NIC बांका की टीम को दिया है। इधर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों और प्रमुख स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 10 गैस एजेंसियों और 34 महत्वपूर्ण स्थलों की जांच की जा चुकी है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए समरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बीते दिनों आए चक्रवाती आंधी तूफान से जिले के लोग परेशान दिखे। रजौन में तेज हवा के कारण एक दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि 13 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। दूसरी ओर धोरैया प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी ने कई परिवारों की मुश्किल बढ़ा दी। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले के तहत बांका जिले के 6 प्रखंडों में 21 से 23 मई तक 64 आदि सेवा केंद्रों पर विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना तथा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। शिविर में ग्रामीणों का भारी उत्साह देखने को मिला और विभिन्न काउंटरों पर लगी लोगों की भीड़ उमड़ी रही। शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित अन्य योजनाओं से संबंधित कुल 3,392 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,848 का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 1,807 स्किल सेल एनीमिया जांच, 297 टीवी जांच, टीकाकरण तथा 213 आयुष्मान भारत कार्ड आवेदनों का त्वरित निष्पादन भी किया। जिले में महिला और बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल विवाह रोकथाम और निषेध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांका सदर प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी कटेली पंचायत के ग्राम दुधियातरी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत बांका जिले में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में समरणालय स्थित मिनी सभागार में आमजनों की समस्याओं की सुनवाई की जा रही है।
0: अभी आप सुन रहे थे बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विदु शेखर।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। गायिका हैं कुमारी ज्योति। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं मीराबाई की ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आज गायिका थी कुमारी ज्योति। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म कोहिनूर से लिया है। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है। गीत के बोल शकील बदायूनी के हैं और संगीत तैयार किया है नौशाद ने।

अगला नगमा फिल्म मुगले आजम से है, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, आवाज लता मंगेशकर की है।

0: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
2: आशा भोसले एवं शमशाद बेगम को अब आइए सुनते हैं फिल्म किस्मत में गीतकार एस एच बिहारी संगीतकार हैं ओम प्रकाश नैयर

0: आकाशवाणी एट 90। इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexus.
1: Mastana. यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ें हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर एवं मुकेश का गाया यह है फिल्म मेरे हमसफर का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म कर्तव्य में। गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मुकेश के स्वर में अब आइए सुनते हैं फिल्म मिलाप का एक नगमा। गीत के बोल लिखे हैं नक्शलयालपुरी ने और संगीत तैयार किया है ब्रिजभूषण ने।

मुकेश के गाए फिल्म मिलाप के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़

0: और FM 100.1 MHz पर 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री

0: कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल

0: माने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने

0: ये तो सबको कवर किया जाता है।
1: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमुई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
1: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से

तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें चार दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अजम रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती है।

0: संकट भी बन सकती है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि

0: इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त तीन विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसंख्या में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बात की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास इसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
0: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो

0: का यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो, और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो बोर्ड भोले साहब ने अपने कमेटी के रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे बोर्ड भोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा, उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा, और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को दो कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये दो कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा, और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी हैं, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
2: 1983 में जो आईएमडीटी एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है, जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का, एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम

0: ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है, तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और फिर

0: चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करकर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
0: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
2: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको रिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की। इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी, इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
3: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इल्लीगल। आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
0: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज

0: और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षा

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है कंपेयरिंग आधारित फिल्मी गजलों का कार्यक्रम।

0: आज की इस बज़्म में मैं हूँ आपका दोस्त विशाल आनंद।
1: शाम का ख्याल आ गया।
0: इस फिल्मी गज़ल के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त के इस गज़ल से, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हर शाम सिंदूरी ढल जाती है अगली शाम का आशरा देके, हर शाम सिंदूरी ढल जाती है अगली शाम का आसरा देखे, और न जाने कितने सूरज ढलेंगे हर रोज तुम्हारा इंतजार करके।

0: भूपिंदर को अब आइए सुनते हैं फिल्म घरौंदा में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत तैयार किया है जयदेव ने। शहर अनजाना, लोग अनजाने, हम थे दीवाने और लोग बेगाने, सर छुपाने का कोई ठिकाना कब मिलेगा, निकला हूँ जिस सफर में आबुदाना कब मिलेगा।
1: कुछ साए कुछ परछाइयाँ, कुछ चाहत के सजदे, न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश, उसकी उंगली पकड़े कुछ ढूंढ रहा है।

अगली गज़ल के लिए फ़िल्म का नाम है आवारगी। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे तर्जों में ढाला है अनु मलिक ने, और इस गज़ल को अपनी आवाज़ दी है ग़ुलाम अली ने। मोहब्बत के लिए दिल में जितने सपने संजोए थे, रो रो के मेरी आँखों ने रातों के चैन खोए थे। दिन का सुकून तो तब से ही गायब है जब से आशिकी का बीज अपने हमने मन में बोए थे।

और कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश जगजीत सिंह के स्वर में है। इसे हमने फिल्म अर्थ से लिया है। शब्द रचना कैफे आजमी की है और संगीत जगजीत सिंह का ही है।

अगर दिल में प्यार नहीं है तो ये बेकरार क्यों है? अगर दिल में प्यार नहीं है तो ये बेकरार क्यों है? राहे वफा पे चलने को ये हर पल तैयार क्यों है? हम जब भी अपनी राहें तेरी राहों से अलग करते हैं, किस्मत उसी मोड़ पर हमें लाता बार बार क्यों है?

आप सुन रहे थे कंपेयरिंग आधारित फिल्मी गजलों का कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। रात्रि के 10 बजे हैं, क्षमा करेंगे, रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पहला गाना हमने फिल्म जमीर से लिया है, किशोर कुमार एवं मन्ना डे की युगल आवाजें हैं। गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार हैं सपन चक्रवर्ती। आइए सुने ये गीत।

0: अरे यार बिना सब जग अंधियारा कैसे पूरन माशी।
1: ए इश्क मुश्क ना छुपते यारो ना ही फूल गुलाबी।
0: अरे जिसको चढ़े शराब इश्क की वो

0: 讲吗？
1: लता मंगेशकर के स्वर में अब सुनिए फिल्म जख्मी का ये गीत। गीतकार गौहर कानपुरी, संगीतकार हैं बप्पी लाहड़ी।

आशा भोसले एवं मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में अब आइए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात का एक नगमा। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

अगला नगमा लता मंगेशकर एवं साथियों के स्वर में है। फिल्म का नाम है मधुमती। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और इसके लिए संगीत तैयार किया है सलील चौधरी ने।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म दिल लगी से है। सुरैया और श्याम की युगल आवाजें हैं। गीतकार शकील वदायुनी और संगीत तैयार किया है नौशाद ने।

0: पुरानी फिल्मों से। यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज़ुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।